हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना

0: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: पाकिस्तान अमेरिका ईरान का हमला रोके बीहर गालियों शुरू करने जो मुतालबो करे छो पर हाल नाजुक है। अमेरिका ईरान के बीहर इस्लामाबाद मुआहद कोशिश कर रहा हूं। स्वार्थकारी गालियों अगते वधण जो वाहिद रस्तो आए दुरियन साहब ने हुर्मुज़ जे बयाली सूरत हाल मामूल ते आण लाइ गालियों जारी आइन। दुरियन के इस्लामाबाद मुआहदे तहत टेक्निकल सतह वारी गालियों डां वापस अचण घुर्जे।
3: इहो न समझो त तव्हांखे इलेक्शन चोरी करण ॾींदासीं। कश्मीर में असांजो मैंडेट चोरी थियो त वफ़ाक में तव्हांजी उबती गणप शुरू थी वेंदी। इंसाफ़ कंदव त इंसाफ़ थींदो, दांदली कंदव त तव्हांजो बि ख़ैर न आहे। मीरपुर इलेक्शन में दांदलीअ जूं वीडियोज़ बि साम्हूं आयूं। एप्लीकेशन जे पीपल्स टो ज़रदारीअ जो मुज़फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब। बिलावल भुटो ज़र पीटीआई जे शिकार जा माहिर थी चुका आहिनि। पीटीआई जे दोस्तनि खे बाइकाट वारी सियासत छॾण घुर्जे। आज़ाद कश्मीर असम्बली बि पाकिस्तानी रियासत खां ट्रुथ कमीशन जो मुतालबो कयो आहे। एहतजाज कंदड़ कमीशन क़बूल कनि, इनशाला इंसाफ़ थींदो।
2: वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी मुल्क जे समूरनि मसइलनि जो हल नवनि सूबनि खे क़रार ॾेई छॾियो। मोहसिन केर मञे या न, असांजो निज़ाम तबाह थी चुको आहे। जेसी ताईं नवां सूबा या यूनिट्स न ठहंदा तेसी ताईं शयूं ठीक न थींदियूं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सूबा या जेको बि नालो ॾियो उन खे अवामी सतह ते खणी वञणो पवंदो। आम माण्हू नंढियुनि नंढियुनि शयुनि लाइ धिका खाई रहिया आहिनि। ज़रिए मुल्क हुजण बावजूद कणक ॿाहिरां घुराइणी पवे थी। नौजवान जो रुगो हिकु मुतालबो आहे त खेन मेरिट ते मोकिया ॾिना वञनि। हाणे हर सूरत में खेन मोकिया ॾियणा पवंदा। नौजवान चओ या काकरोच ई गॾिजी उथी पिया त सभु कुझु ऊंधो थी पवंदो।
3: बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त संदसि ज़ाती राय आहे त कराची ऐं गवादर वफ़ाक जो हिसो हुअणु घुर्जनि। सूबनि में इंतज़ामी यूनिट्स हुजनि, डीजी खान खे ॿिए शहर सां मिलाए सघिजे थो। लसानी बुनियाद ते सूबा ठाहिया वेंदा त नओं पिंड वारो बॉक्स खुलंदो। नवां इंतज़ामी यूनिट्स ठाहिण पाकिस्तान लाइ सुठो हूंदो। पाकिस्तान में ईंदड़ चूंडूं नई स्ट्रक्चर त थी सघनि थियूं। पीपल्स पार्टी जी अॻवान नेहर बुखारी चयो चवण आहे त सूबनि खे हदनि में फेरफार लाइ सूबाई असम्बली में ॿ भाङे टे अक्सरत सां ठहराउ मंज़ूर थियण ज़रूरी आहे। ख्वाजा आसिफ पहिरियां पंहिंजे काबीना ऐं वज़ीर आज़म सां ॻाल्हाए, वज़ीर आज़म वटि इहा ॻाल्हि आई त उहो पीपल्स पार्टी सां ॻाल्हाईंदो।
4: पैसे बढ़ाने के तरीक़े मशवरे तो बहुत मिलेंगे।
5: कमेटी डालो,
6: ट्रेडिंग पे
2: ॿाएतालीह पैसा महांगो, पेट्रोल जो नओं अघु 336 रुपया 15 पैसा ऐं डीज़ल जो नओं अघु 394 रुपया 4 पैसा फी लीटर थी वियो। नोटिफिकेशन मूजिब पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नवां अघु 31 जुलाई लाइ हूंदा।
3: सिक्योरिटी फोर्सिस जो खुज़दार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनतुल हिंदुस्तान जा 4 खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब मारिजी वियल खारजी दहशतगर्दनि वटां वॾे बारूदी मवाद ऑपरेशन दौरान बारूदी मवाद सां भरियल ॿिनि गाॾियुनि खे पिण तबाह कयो वियो आहे। इलाइक़े में ॿियनि दहशतगर्दनि जे ॻोल्हा लाइ क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी आहे। अज़म इस्तहकाम त दहशतगर्दनि जे मुकमल ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रहंदो।
2: वज़ीर आज़म बिजली विरिहाईंदड़ कंपनियुनि जे बिलिंग सिस्टम जी टेक्निकल ऑडिट कराइण जी हिदायत करे छॾी। शहबाज शरीफ चयो आहे त पावर सेक्टर जे बहितरी लाइ अञा घणी महिनत जी ज़रूरत आहे। बिजली जी चोरी मुकमिल तौर ख़तम करण लाइ हर सतह ते कदमनि खया वञनि ऐं ॻोठनि जी सतह ते शमसी तवानाई जा मनसूबा तयार कया वञनि।

0: जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूरखा आराम, हर रोज हर कदम, अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

रुपया मुआवजो अदा कयो वेंदो। बोर्ड ऑफिस में हमास ऐं ॿियनि वेड़ाक तंज़ीमनि पारां हथियार फिठा करण इसराइली फ़ौज सदर डोनाल्ड ट्रंप जी दावा सदर डोनाल्ड त जीअं ई हमास हथियार फिठा कंदो इसराइली फ़ौज गज़ा खां ॿाहिरि वेंदी। मुआहिदो नई फ़लस्तीनी हुकूमत जे क़याम लाइ अहम अगभराई आहे। मुआहिदे ते मुंज़िम तरीक़े सां मरहलेवार अमल दरामद कयो वेंदो। आलमी इस्तक़ाम फ़ोर्स फ़लस्तीनी फ़ोर्स सां गॾिजी ज़िमेवारियूं संभालींदी। हमास सरंगनि नेटवर्क हथियार जो ज़खीरो ऐं हथियार ठाहिण वारो मशीनरी ऐं हंध तबाह करण समेत फ़ौजी ढांचो ख़तम कंदी। अमरीकी इख़्तियारनि जो चवण आहे त गज़ा में फ़लस्तीनी अथार्टी ऐं हमास जे मुतबादल तौर टेक्नोक्रेट हुकूमत जो क़याम ग़ौर हेठि आहे। मुआहिदे ते अमल दरामद कुझु हफ़्तनि में शुरू थींदो। इहो न समझो त इलेक्शन खे चोरी करण ॾींदासीं। कश्मीर में असांजो मैंडेट चोरी थियो त वफ़ाक में तव्हांजे उबती ॻणप शुरू थी वेंदी। इंसाफ़ कंदव त इंसाफ़ थींदो, धांधली कंदव त तव्हांजो बि ख़ैर न आहे। मीरपुर इलेक्शन में धांधली जूं वीडियोज़ बि साम्हूं आयूं। अफ़सोस आहे जो सबूत ॾियण बावजूदि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो मुज़फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब। बिलावल भुट्टो चयो आहे त हू पीटीआई जा मम्मी डैडी वारा नाहिनि, हुननि वटि जियाला मौजूद आहिनि। अहिड़ा जियाला आहिनि जन ज़िया तोणे मुशरफ जो मुक़ाबलो कयो ऐं ही सभु शींहं जे शिकार जा माहिर थी चुका आहिनि। पीटीआई दोस्तनि खे बायकाट वारी सियासत छॾणु घुर्जे। आज़ाद कश्मीर असेंबली बि पाकिस्तानी रियासत खां ट्रुथ कमीशन जो मुतालबो कयो आहे। एतिजाज कंदड़ कमीशन क़बूल कनि, इनशाला नसीब थींदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी मुल्क जे समूरनि मसइलनि जो हल नवनि सूबनि खे करार ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद में इकोनॉमिक समिट खे ख़िताब कंदे मोहसिन नक़वी चयो त केरु मञे या न मञे असांजो निज़ाम तबाह थी चुको आहे। जेसिताईं नवां सूबा या यूनिट्स न ठहंदा तेसिताईं शयूं ठीक न थींदियूं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबा जेको बि नालो ॾियो उनखे अवामी सतह ते खणी वञणो पवंदो। आम माण्हू नंढी नंढी शयुनि लाइ धिका खाई रहिया आहिनि। ज़रे मुल्क हुजण बावजूद कणक ॿाहिरां घुराइणी पवे थी। नौजवाननि जो रुगो हिकु मुतालबो आहे।

बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त संदसि ज़ाती राय आहे त कराची ऐं गवादर वफ़ाक़ जो हिसो हुजण घुर्जन। सूबे यूनिट्स डी जी खान खे ॿिए शहर सां मिलाए सघिजे थो। लसानी बुनियाद ते सूबा ठाहिया पिंडारो बॉक्स खुलंदो। नवां इंतज़ामी यूनिट्स ठाहिण पाकिस्तान लाइ सुठो हूंदो। पाकिस्तान में ईंदड़ चूंडूं नए असेंबलीअ में ॿ भाङे टे अक्सरियत सां ठहराउ मंज़ूर थियणु ज़रूरी आहे। ख़्वाजा आसिफ पहिरियां पंहिंजी काबीना वज़ीर आज़म सां ॻाल्हाए, वज़ीर आज़म वटि इहा ॻाल्हि आई त इहो पीपल्स पार्टीअ सां ॻाल्हाईंदो।

0: नाल हिंदुस्तान जा चार खारजी दहशतगर्द मारजी विया। ISPR मौजूद मारजी वयल खारजी दहशतगर्दनि वटां वॾे अंग में हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ आया। ऑपरेशन दौरान बारूदी मवाद सां भरियल ॿिनि गाॾियुनि खे पिण तबाह कयो वियो आहे। इलाइक़े में ॿियनि दहशतगर्दनि जी ॻोल्हा लाइ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी आहे। अज़म इस्तक़ाम तहत दहशतगर्दनि जे मुकमल ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रहंदो। वज़ीर-ए-आज़म बिजली विरहाईंदड़ कंपनियुनि जे बिलिंग सिस्टम जे टेक्निकल ऑडिट कराइण जी हिदायत करे छॾी। शहबाज़ शरीफ चयो आहे त पावर सेक्टर जी बहितरीअ लाइ अञा घणी महिनत जी ज़रूरत आहे। बिजलीअ जी चोरी मुकमिल तौर ख़त्म करण लाइ हर सतह ते कया वञनि ऐं ॻोठनि जी सतह ते शमसी तवानाईअ जा मनसूबा तयार कया
1: वञनि।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का निखार और गर्मी

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की

0: तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द सोजिश
0: से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अभी बुधोपिया जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
4: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
6: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
7: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: देखिए सवाले इश्क, सुनहरी तितलियाँ और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: It's 11 AM. This time check is brought to you by
4: Al Habib Karan.

ईरान जो कुवैत में अमेरिकी स्टेट जगहंदन ते ड्रोन ज़रिए निशानो बणाइण जी दावा। ईरानी फ़ौज चयो त कश्मीर ते रहायशी इमारत ते अमेरिकी हमले जे रद अमल में अमेरिकी वेड़ाक जहाज़ जे मसावलाती निज़ाम ऐं गदामनि खे

0: समर जे नाव मोम जारी
1: साथ जिंदगी भर का।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: यार ही गोडन जो सूर है, चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो।
5: तो पोई छा अन्या तई फकीरी एनल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थई?
4: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
5: बिल्कुल अदा, कुदरती जुजन सा तैयार कैल फकीरी एनल जैसे क्रीम मुतासिर हंद ते जल्दी जजब थी। सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मां आराम पहुंचाने में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोरन जो सूर, कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
4: इस्तेमाल किए कजे,
5: रुगो मुतासिर हंद ते डीह में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वच आई बुध। जेकर उमरे या हज ते वनन जो इरादो थई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पान सा गड खणी वंजा।
4: वाह, पोए अजी वठींदस।
5: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडू ही पांजे वेजे मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

त मुंहिंजा मिठा साईं आबदा परवीन जो ख़ूबसूरत आवाज़ आहे प्रोग्राम जे आगाज़ में, त हलो त आबदा परवीन जो आवाज़ ॿुधूं ऐं हुनखे इंजॉय कयूं। ऐं तव्हां छा कंदा इस्तड़ी, तव्हां पंहिंजी मोबाइल फ़ोन खणंदा, हुनजे राइट मैसेज ऑप्शन में हलाए वेंदा ऐं मारो लिख अदा स्पेस ॾींदा, स्पेस खां पोइ लिखंदा पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलींदा असां ॾांहुं 888-1 ते। पंहिंजे पसंदि जो कलाम हुन में ज़रूरु लिखिजो, पंहिंजे दोस्तनि जा नाला हुन में ज़रूरु लिखिजो, पंहिंजे शहर जो नालो हुन में ज़रूरु लिखिजो, त मूंखे ख़बर पए त कहिड़ा मुंहिंजा भाइर या कहिड़ियूं मुंहिंजी भेनरूं मूंखे किथां खां ॿुधी रहियूं आहिनि या किथां खां ॿुधी रहिया आहिनि। राग जी राणी आबदा परवीन।

सिंधु जी बेहतरीन ऐं सूफ़ी रागी आबदा परवीन जी आवाज़ में तव्हां खे ख़ूबसूरत ट्रेक ॿुधायोसीं। तव्हांखे ख़बर आहे मुंहिंजा मिठा साईं त आबदा परवीन कहिड़े साल में पैदा थी हुई? तव्हांखे मां ॿुधायां, संदसि जनम 20 फरवरी 1954 ते सिंध जे शहर लाड़काणे में थियो हुयो। ऐं पंहिंजे उहा जेका आवाज़, हुन जो जेको मुनफ़रद आवाज़ आहे न, ऐं सूफ़ी कलाम जो दिलकश अंदाज़ ऐं रूहानी मौसीकीअ सबबु सॼी दुनिया में अॼु बि सुञाती वेंदी आहे। संदसि वालिद उस्ताद गुलाम हैदर मौसीकीअ जा पिण वॾा माहिर हुया, जिन आबदा परवीन खे नंढपिण खां ई राग जी सिखिया ॾिनी। ऐं आबदा परवीन ख़ासि तौर ते हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सचल सरमस्त, बुले शाह, ख्वाजा ग़ुलाम फरीद ऐं ॿियनि सूफ़ी शाइरनि जा कलाम ॻाए शोहरत माणी। ऐं हिन वक़्तु शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाईअ जो ई जेको आहे उर्स मुबारक जूं तकरीबूं बि जारी सारी आहिनि। सिंध तोड़े पंजाब, पूरो पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया मां माण्हू हिन वक़्तु ओॾां अचनि पिया। ऐं आबदा परवीन खे पाकिस्तान हुकूमत सदारती तमगो थींदो आहे, हिकिड़ो सदारती तमगो पिणु ॾिनो, जंहिं में तमगाए इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ ऐं हिलाल इम्तियाज़ शामिल आहिनि। हू न रुगो पाकिस्तान पर यूरोप, अमेरिका, विच ओभर ऐं दुनिया जे केतिरनि ई मुल्कनि में सूफ़ी मौसीक़ी जी नुमाइंदगी करे चुकी आहे। आबदा परवीन खे सूफ़ी मौसीक़ीअ जी राणी सॾियो वेंदो आहे। संदसि आवाज़ खे मोहबत, अमन ऐं रूहानियत जो पैगाम सम्झो वेंदो आहे। त उन जे करे आबदा परवीन जो बहितरीन हिकिड़ो ट्रैक हुयो जेको तव्हां जे असां समातुनि ताईं पहुचायो। ऐं कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि, उहे बि पंहिंजे प्रोग्राम में हिन वक़्तु असां शामिल कंदा हलूं। त असां सां गॾु आहे ॻोठ दूरो बीहण खां शौकत अली बीहण। दादा शौकत, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो, तबियत सही आहे तव्हांजी? उमेद अला ताला तव्हांजे ख़ैर ख़ैरियत कई हूंदी। ऐं अदा सां गॾु आहे नादिर अली बीहण, अली गुल बीहण, ऐं चवनि था गुलाब साईं सलाम। त वालेकुम असलाम, वालेकुम सलाम, ऐं भली कार पखे रागले। ऐं चवनि था असांखे शवन अली मीरालीअ जो कलाम ॿुधायो, जेको डेडिकेट कनि था भाई खान बीहण खे। ओए होए होए होए यार, माण्हू अहिड़े खे तव्हां इहो कलाम डेडिकेट कयो आहे? चङो ठीकु आहे, भला भाई खान जी शख़्सियत मुताबिक़ तव्हांखे असां कलाम ॿुधाईंदासीं। ऐं उन खां पोइ ॿियो मोहम्मद हुसैन उमराणी साहब खे अदा। ॿई तव्हां नाला अहिड़ा लिखिया आहिनि जो घर में जहिड़ो आहे। इन जे करे कोशिशि कंदासीं मुंहिंजा साईं तव्हांखे अहिड़ो सुठड़ो को सॉन्ग असां शमन अली मीराली जो ॿुधायूं जो तव्हां बिल्कुलु ख़ुशि थी वञो। ऐं असां सां गॾु आहे ग़ुलाम हुसैन शर, अदाजन कहिड़ी मोरी लिखियलु आहे, बरहाल कंहिं मोरीअ खां हिननि लिखियो आहे। चवनि था अदा अस्सलाम अलैकुम। त वालेकुम अस्सलाम भाउ ग़ुलाम हुसैन, तव्हांखे मां स्पेशली पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो।

मुझे मिठा साईं प्रिय के परचाइण मोहब्बत बर्दाश्त खुलूस वफादारी जो खूबसूरत इज़हार है। इंसान की जिंदगी में रिश्तन की अहमियत तमाम घनी होंगी अथव उन रिश्तन के मजबूत रखने के लिए कदें कदें पांजी अना के पासे ते रखी करे मुआफ़ी वठनी या मुआफ़ी देनी पवंदी है। सच्चा प्यार कंदड़ हमेशा उहे चाहिंदा त संदन महबूब खुश रहे भली उन लाइ खेन पंहिंजो ज़िदी छो न छॾणो पवे। प्रिय खे परचाइण जो मतिलबु रुगो नाराज़ महबूब खे राज़ी करणु नाहे पर दिलनि मां ग़लति फ़हमियूं ख़तमु करे मोहबत एतमाद ऐं कुर्बत खे ॿीहर बहाल करणु आहे। मिठा लफ़्ज़ सुठो इख़लाक सचाई इज़त ऐं ख़ुलूस अहिड़ा वसीला आहिनि जेके कंहिं बि नाराज़ दिलि खे आसानीअ सां मौकियो फराहम कंदा आहिनि। त शमन अली मीराली बि कुझु अहिड़ा ई बोल चवे थो ऐं अचो त उहे ॿुधी

0: ही से रिश्ते।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap. Jildi infection se bachao ka behtareen zariya hai.
5: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
4: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM।

ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬੁਧਾਇਓ ਪੰਧਨ ਜੋਖੀ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਓ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਬਲਕਿ ਹਿਕੜੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਅਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੱਚੀ ਮੁਹਬਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਐਂ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਨਿ ਜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖੇ ਇਨਤਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਮੀ ਬਿਆਨ ਕਯੋ ਆਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਚਵੇ ਥੋ ਤ ਜੇਕਡਿ ਦਿਲ ਮੇਂ ਇਸ਼ਕ ਐਂ ਸੱਚਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖੇ ਕਿਸੇ ਬਿ ਕਿਸਮ ਜੀ ਅਕਲੀ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਾਲਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨ ਰਹੇ ਆ ਛੋ ਤ ਸੱਚੀ ਮੁਹਬਤ ਪਾਣ ਖੇ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣਾਏ ਛਡੀਂਦੀ ਆਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਥੀਂਦੇ ਚਵੇ ਥੋ ਤ ਮੁਹਬਤ ਜੀ ਵਾਟ ਮੀਂਹ ਡੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ੂ ਐਂ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ੂ ਅਚਨ ਥਿਯੂੰ ਪਰ ਸੱਚੋ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਖੇ ਖੁਸ਼ੀਅ ਸਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਥੋ ਮੁਹਬਤ ਇਨਸਾਨ ਖੇ ਸਬਰ ਬਰਦਾਸ਼ ਕੁਰਬਾਨੀ ਐਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜੋ ਦਰਸ ਡਿਏ ਥੀ ਜੇਕੋ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪੰਹਿੰਜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਂ ਸੱਚੋ ਹੁਜੇ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਮੀਂਹ ਪੰਹਿੰਜੀ ਵਾਇਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਥੋ इो भी पैगाम दिनों वो आए तो नफरत गुरूर खुदगर्दी इंसान के तबाही दां वी वन था जडे त मोहब्बत आज थी सच्चाई इंसान के इज्जत सुकून कामयाबी अता करे थी त मुझे मिठा साई प्रोग्राम में दोस्त मैसेजिस भी आन उ गडो गड शामिल कदा हल्दी तसूँ था कड़े भाव जो मैसेज इन वक्त असाज पैनल से मौजूद है त असा लिखे तो भा अस्सलाम वालेकुम गुलाब भाई कैसे हो त वालेकुम असलम भा मुझा मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया अदा जन चवन था कैसे हो शो वी आई पी है मुझे सॉन्ग सुना दो शाहिद बबर का जी त शाहिद बबर ढो सुठो रागी आए इनशाला तेज पसंद में सॉन्ग जरूर बुधाइंद सही अदा जन सा गड है माजिद सोलंगी फिराम सखर अदा माजिद तवा के अदा जन मैसेज के जरिए सलाम भी चयान सॉन्ग भी तेजे डेडिकेट किया है उम्मीद है तवा भी बुधा हूँ ऐं अदा खे रिप्लाई ज़रूर कंदा महिरबानी आहे मुंहिंजा मिठा तव्हांजी अस्सलाम वालेकुम यारी मदद वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद अदा जन चवे थो प्रोग्राम ज़बरदस्त आहे कंपेयरिंग तमामु बहितरीन आहे महिरबानी अदा प्रोग्राम खे पसंदि कयो पिया कंपेयरिंग खे पसंदि कयो पिया हुन जे लाइ तव्हांजा लख कुर्ब ऐं तव्हांखे मां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो अच्छा इहो आहे केरु इहो आहे हालाणी खां कुर्बान अली डेपर अदा डेपर साहब कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा ठीकु आहियो त बि सही आहे तव्हांजी अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखंदो क़ुर्बान साईं मुंहिंजी सिर बि थो तव्हां क़ुर्बान त मोहम्मद आचर डेपर हुन सां गॾु आहे सावण खान हाले पोटो ऐं हुन सां गॾु आहे जेको हाले पोटो साहब ऐं अदा जन चवनि था डेडिकेट कनि था अब्दुल जबार चन्ना खे ऐं चवनि था असांखे रहमान मुगल जी आवाज़ में कलाम ॿुधायो त हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं छो न ॿुधाईंदासीं तव्हांजो शो आहे फिलहाल वक़्तु ॾाढो ज़बरदस्त हिकिड़ो सॉन्ग मुंहिंजी प्लेलिस्ट में आहे ऐं ऑटो प्ले बि थी वियो आहे छो त

रात वतली खान जो खूबसूरत आवाज ऐं तव्हांजो सुंदर समा थूं त मुंहिंजा मिठा साईं तव्हां सां हिन शो में शामिल थी सघो था। बज़रिया आहे SMS ऐं SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, MRO लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहां 888-1 ते। अहिड़े तरीक़े सां कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि, उन्हनि खे बि गॾो गॾु पंहिंजे प्रोग्राम जी सूंहं बणाईंदे हलंदासीं, छो जो तव्हांजा मैसेज असांजे प्रोग्राम जी बिल्कुलु सूंहं आहिनि। त असां सां गॾु हिन वक़्तु प्रोग्राम में असां सां गॾु आहे असांजो प्यारो भाउ ॻोठु ग़रीबो खान बेहण, ॻोठु जाड़ो खान बेहण खां आहे चनेसर खान बेहण। चनेसर खान बेहण ॾाढो सुठो माण्हू आहे, दिलरुबा माण्हू आहे, मोहबत भरियो माण्हू आहे, ॾाढी मोहबत ॾींदो आहे असांखे, ॿुधंदो बि आहे असांजा मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम बि ॿुधंदो आहे, ऐं स्पेशली जेको आहे मुंहिंजी हुन सां तमामु घणी दोस्ती बि आहे, मोहबत बि आहे ऐं प्यार बि आहे। ऐं चनेसर पाण हिकिड़े बहितरीन शाइर जो पुटु आहे। आदा चनेसर, मुंहिंजी तरफ़ खां तव्हांखे, तव्हांजे वालिद खे, तव्हांजे ब्रादर खे ऐं तव्हांजे समूरनि ॻोठ वारनि खे सलाम चइजो। ऐं जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं निमाज़ ते वञो त असांखे दुआउनि बि यादि कजो ऐं मौला ख़ुशि रखंदव तव्हांखे ऐं आबाद हुजो। असां तव्हांजे लाइ दुआ गो आहियूं ऐं अहिड़े तरीक़े सां तव्हां असांजो रेडियो ॿुधंदा कयो ऐं असांजे शो में शामिल थींदा कयो। लख कुर्ब तव्हांजा मुंहिंजा सॼण साईं। त असां सां गॾु आहे अली नवाज़, ऐं अली नवाज़ चवे थो त मूंखे कलाम ॿुधायो रूफ मक्सीअ जे आवाज़ में। दादा अली नवाज़, जेको तव्हां कलाम जा ॿोल लिखिया आहिनि ऐं समुझ में कुझु घटि पिया अचनि ऐं बाक़ी तव्हांखे मां कलाम रऊफ़ मक्सी जी आवाज़ में ॿुधायां थो। उमेदु आहे त उहो तव्हांखे पसंदि अची वेंदो ऐं तव्हां मुंहिंजे शो में शामिल थिया आहियो। मुंहिंजी तरफ़ खां तव्हांखे ख़ासि तौर ते भलीकार। असांजे प्रोग्राम में असां सां गॾु आहे माजिद सोलंगी फ्राम सखर। चओ था आदा गुलाब, तव्हांजो आवाज़ ॾाढो मिठो आहे, महिरबानी मिठा साईं, तव्हां बि ॾाढा मिठा आहियो ऐं अलाह ख़ुशि रखंदव। माजिद साईं आबाद हुजो, लख कुर्ब तव्हांजा। सखर वारा असांजा प्यारा जेके दोस्त आहिनि, जे आई अब्दुरहीम जे लाइ किथे गिराज़ुर आहे त उहो बि ॾाढो मिठो माण्हू आहे। अहिड़े तरीक़े सां वरी तव्हां आहियो या सखर खां ॿिया काफ़ी दोस्त आहिनि जेके असांखे लिखंदा आहिनि, असांजे प्रोग्राम में शामिल थींदा आहिनि ऐं ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। ऐं लाड़काणे जा दोस्त बि लिखंदा आहिनि, मीरपुर ख़ासि वारा बि अॼु लाइ किथे गायब आहिनि, उन्हनि जा बि मैसेज न त अमूमन हिन

टाइम ते अची वेंदा आहिनि ऐं लाड़काणे वारनि जा बि अची वेंदा आहिनि ऐं अहिड़े तरीक़े सां वरी असांखे ॿुधंदा रहंदा आहिनि असांजा प्यारा दोस्त मीर मेरापुर स्टेशन तां उन्हनि जा बि मैसेज ईंदा आहिनि त शायद अॼु कंहिं कम में मसरूफ़ आहिनि या वरी जेकर ॿुधी रहिया आहिनि त पोइ हू तयारीअ में हूंदा दादा गुलाब खे ज़रूरु असां मैसेज कयूं था त बिल्कुलु दादा तव्हां होॾे मैसेज मोकिले सघो था, महिरबानी आहे तव्हांजी। ऐं अदा माजिद जो ई ॿियो मैसेज असांजे प्रोग्राम में आहे, चए थो अस्सलाम अलैकुम गुलाब भाई, वी आई पी शो आहे ऐं शाहिद अली बबर जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे। त शाहिद अली बबर जो कलाम अदा ज़रूरु तव्हांखे ॿुधाईंदुसि ऐं ॾाढो ज़बरदस्तु तव्हांखे शाहिद अली बबर जो कलाम ॿुधाइबो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 12 PM. This transact is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
5: बरतो पाकिस्तान पारां बे हिमायत बहरी दिफाई एताब के क़याम लाइ इजलास में 43 मुल्कन शिरकत कई। सऊदी अरब के बहरी एताब जो बानी सरबराह बणाइण ते ॻाल्हियूं थियूं। एताब बाबलमंद में विच ओभर में दिफाई सहकार खे मज़बूत कंदो। सऊदी परदेही वज़ारत मूजिब हर मुल्क इतिहाद में शमूलियत करे सघे थो।

ईरान जो कुवैत में अमेरिकी स्ट्रेटजिक हंधनि ते ड्रोन ज़रिए निशानो बणाइण जी दावा। ईरानी फ़ौज चयो त कश्मेट ते रहायशी इमारत ते अमेरिकी हमले जे रद अमल में अमेरिकी वेढ़ाक जहाज जे हिंगर्स मुवासिलाती निज़ाम ऐं गोदामनि खे निशानो बणायो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालेबाफ चयो आहे त अमेरिका खे कश्मीर ईरानी शहरनि ते हमले जी घणी क़ीमत अदा करणी पवंदी। कोयटा जे इलाके स्पेन कारेज में कोयले जे खाण में धमाके सबब 34 कोहरे दबजी फोत। खाण में फाथल 8 जणनि खे बचाइण लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीडीएम में 41 जो चवण आहे त खाण मां वधीक 6 मजदूरनि जा लाश ॿाहिरि कढिया विया आहिनि। फोतियुनि जो अंग वधी 34 थी वियो आहे। धमाके वक़्त 42 मजदूर खाण अंदरि मौजूद हुआ। सूबाई वज़ीर मदनियात शोएब नौशेरवानी चयो आहे त ॾुखियुनि हालतुनि बावजूद रात देर ताईं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहियो। खाण अंदर फाथल ॿियनि पोरितनि खे बि ॿाहिरि कढियो वेंदो। साने में कंहिं जी ग़लती या कोताही साबित थी त सख़्त सज़ा ॾिनी वेंदी। बलोचिस्तान सरकार पारां हादसे में फोत थियल मज़दूरनि जे वारसनि खे मुआवज़ो ॾियण जो ऐलान। फोत थियल मज़दूरनि जे वारसनि खे 5-5 लख ऐं ज़ख़्मियुनि खे 3-3 लख रूपया मुआवज़ो अदा कयो वेंदो। जेकोबाद में बना पुलिस मुकाबले में मारिजी वियल नौजवान जो लाश रखी धरणो। वारसन अली हैदर बुलेदीअ जो लाश रखी धरणो हयो। वारसन जो चवण आहे त पुलिस कूड़े मुकाबले में नौजवान खे क़तल ऐं बख़्शल बुलेदीअ खे ज़ख़्मी कयो आहे। मुलविस अहलकारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। नौशेरो फेरोज में कोच ऐं ट्रक में टकर, हिकु ॼणो फोत। क़ौमी शाहराह ते नूरपुर वटि हादसे सबब फारूक चन्ना फोत। 4 ॼणा ज़ख़्मी। मुसाफ़िर कोच शिकारपुर खां कराची वञी रही हुई त हादसो पेश आयो। मटियारी मोटरसाइकिल में टकर सबब नौजवान फोत। शहरियार शहर जे पुट जहांगीर शहर जे मोबाइल अगवा केस में नामज़द मुख्य जवाबदार राउती जे कचे वारे इलाइक़े मां गिरफ़्तार। पुलिस जवाबदार जतोई शहर ऐं संदसि साथी दोदो शहर खे गिरफ़्तार कयो। कुझ ॾींहं अॻु जहांगीर शहर कचे वारे इलाइक़े मां मोबाइल अगवा थियण बाद कुझ ई कलाकनि में बाज़ियाब बि थियो हो।

हिक वण सिंध अमर जे नाव मोम जारी केटीएन न्यूज ऐं कावश जे सॾ ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मुहिम जारी मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी सिंध खे सरसब्ज़ रखण वारे अज़म जो बेवर जाओ।

0: सोलर है बैटरी से डायरेक्ट है।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
4: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लगण, पुराणन जख्म जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लगायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: दस तक देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki aawaz.
4: वठंदा आहियूं ऐं हीउ जेको प्रोग्राम आहे तव्हांजी पसंदि जो ई प्रोग्राम आहे तव्हांजी ईअं अगरि तव्हां महसूस कंदा त हीउ प्रोग्राम सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ तव्हां जे लाइ आहे त उन में लाइव कॉल जो सिलसिलो मूं शुरू कयो हुयो पर लाइव कॉल जो सिलसिलो इन जे करे वरी मूं कुझु हफ़्तनि जे लाइ स्किप कयो त जीअं जेके मूंखे मिठा माण्हू मैसेज कंदा आहिनि उन्हनि जूं फरमाइशूं रहिजी वञनि पियूं उन्हनि जा जेके आहिनि डिमांड्स जेके हू असां खां कनि पिया उहे रहिजी वञनि पियूं इन जे करे मां लाइव कॉल खे फ़िलहालु स्किप करे छॾियो त न पहिरियां मैसेज वारा जेके दोस्त आहिनि उन्हनि खे असांखे अवलियत ॾियणी आहे। अच्छा ऐं जेके दोस्त हिन वक़्तु दौरान सफ़र असांखे ॿुधी रहिया आहिनि अगरि कोई कार में आहिनि अगरि कंहिं बस में आहिनि अगरि कंहिं ट्रक में आहिनि अगरि कंहिं वेन में आहिनि अगरि कंहिं रक्षा में आहिनि त उन्हनि खे असां चवंदासीं ख़ासि करे ड्राइवर हज़रात खे त बराए करम गाॾी आस्ते हलाइजो ऐं पंज मिंट लेट पहुतासीं को मसलो न आहे का ॻाल्हि कोन्हे का ऐं यकीन कयो जॾहिं मां गाॾीअ में हलाईंदो आहियां चाहे मूंखे केतिरो बि परे सफ़र छो न करणो हुजे चाहे मूंखे ख़बर आहे त मूंखे 12 खां 14 कलाक मुसलसल ड्राइव करणी आहे ऐं ड्राइवर बि मां अकेलो आहियां त बि जेकर तव्हांखे घुर्जे 80 ऐं 100 mph मोटरवे हुजे इन्हनि मां कंहिं बि मोटरवे ते 120 खां बिल्कुल बि मथे न आहे हूंदी 100 ते स्पीड जेका आहे रखी करे असां वेंदा आहियूं हालांकि जन गाॾियुनि में असां सवारी कंदे रफ़्तार हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे माण्हू काफ़ी भॼाए बि सघे थो पर उन जे बावजूद बि असां नाहियूं हलाईंदा छो जो तेज़ रफ़्तारी हमेशह नुक़सान ॾिनो आहे इन जे करे रफ़्तार पंहिंजी खे बिल्कुलु धीमी रखंदा कयो ऐं मुंहिंजो कॉन्सेप्ट इहो ई हूंदो आहे त जेकर 5 मिंट लेट पहुतासीं न त को मसलो न आहे का ॻाल्हि कोन्हे का अधु कलाकु लेट पहुतासीं कलाकु लेट पहुतासीं त का ॻाल्हि कोन्हे का हमेशह ईअं थींदो आहे जेकर मुंहिंजो टार्गेट फिट थियल आहे त मूंखे 12 वॻे सखर पहुचणो आहे ऐं मूंखे ख़बर आहे त मूंखे 2 कलाक आहे त मां 10 वॻे जो निकिरां उन खां बहितर न आहे त मां 9 वॻे निकिरी पवां त मूंखे कलाक जेको एक्स्ट्रा हूंदो न उन में गाॾी जी स्पीड बि कान वधाइणी पवंदी अगरि किथे ट्रैफ़िक इशू आहे त उहो ट्रैफ़िक इशू बि कवर थी वेंदो ऐं ॾिनल टाइम ते मां सुकून सां पहुची वेंदुसि फ्रेश थी वेंदुसि ऐं उहो जंहिं बि कम सां मां वियो आहियां त उहो कमु थी वेंदो आहे हिन जे करे टाइम शेड्यूल बि पंहिंजो अहिड़े तरीक़े सां ई तव्हां ठाहींदा कयो त जीअं तव्हांखे तेज़ रफ़्तारी खां जेको आहे बचाव मिली वञे त प्रोग्राम में दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि उहे बि शामिल कंदा हलंदासीं घुट गुलाम अहमद साबकीअ खां असांजो प्यारो भाउ आहे अली रज़ा साबकी पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो चवे थो साईं अस्सलाम अलैकुम त वालेकुम अस्सलाम अली रज़ा भाउ मुंहिंजी तरफ़ खां तव्हांखे तव्हांजे समूरे ॻोठ गुलाम अहमद साबकी जे प्रिय प्यारनि खे बि अस्सलाम अलैकुम ऐं वेलकम तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम में पहिरियों दफ़ो शामिल थिया आहियो अदा तव्हांखे स्पेशली मां भलीकार चवां थो ऐं अदा जन शेर लिखियो आहे त चवंदा आहिनि त माण्हू सभु नज़र वाह माण्हू सभु

सोणा पखी सबन हंज कें कें माण्हू मंझ अचे बुए बहार जी जी हा बिल्कुल असां जे समाज में के के अहिड़ा बहितरीन शख्सियतूं हूंदियूं आहिनि अहिड़ा बहितरीन माण्हू हूंदा आहिनि जिन मां हर वक़्त बहार जी ख़ुशबू मिलंदी रहंदी आहे बहार जी ख़ुशबू जेका आहे न उहो ख़ुशियूं आणींदी आहे इन जे करे असांखे सभिनी खे इहो ई घुर्जे त असां पंहिंजे पाण खे बहार जी ख़ुशबूअ वांगुरु कयूं जेको बि माण्हू असां सां मिले उहो इहो शेर ज़रूर चए त माण्हू सभु न सोणा पखी सभु न हंज कंहिं कंहिं माण्हूअ में अचे भू बहार जी त महिरबानी अदा अली रज़ा मुंहिंजे तरफ़ खां तव्हांखे इहो जेको शेर आहे इहो डेडिकेट कयां थो तव्हांजे समूरे ॻोठ वारनि खे महिरबानी मिठा ऐं कामरान लगारी असांखे मोरो खां ॿुधी रहियो आहे अदा कामरान पहिरियों दफ़ो तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो तव्हांखे बि मां पंहिंजे प्रोग्राम में स्पेशली भलीकार चवां थो अदा जन जलाल चाणियूं जे कलाम जी फरमाइश कई आहे ऐं हाज़िर मुंहिंजा मिठा जलाल चांडियो असांजे ज़िले नौशहर फिरोज़ जे नंढड़ो हिकिड़ो शहर जेका यूनियन काउंसिल आहे फुल सां हुनजो तालुक़ु हुयो अॼु बि हुनजो औलाद ॻाइण सां तालुक़ु रखे पियो ऐं उनजा पुट ॾाढो सुठे तरीक़े सां ॻाए रहिया आहिनि पर जलाल चांडियो जे लेवल ते ॻाईंदो हुयो ऐं जलाल चांडियो जी जेका मक़बूलियत हुई उहा मक़बूलियत उनजा पुट माणे नाहिनि सघिया पर ईअं बि नाहे त का हुननि मक़बूलियत बिल्कुलु न आहे माणी न हू मक़बूलियत हू बि माणे चुका आहिनि ऐं ॾाढा सुठो ॻाईंदा आहिनि ऐं सॼी सिंध छा पूरे पाकिस्तान में हुननि खे प्रोग्राम में इनवाइट बि कयो वेंदो आहे ऐं हू ॾाढा राज़ ख़ुशि वेंदा आहिनि वॾी ॻाल्हि हुननि जी इहा आहे त हू पंहिंजे वालिद वांगुरु तमामु घणा मोहबत भरिया माण्हू आहिनि त महिरबानी आहे अदा तव्हांजी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया कामरान साईं भलीकार तव्हांखे चऊं था रसूलाबाद खां आबिद हुसैन शंबाणी पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो अदा महिरबानी भा ऐं अदा जन चवंदा अस्सलाम वालेकुम अदा त वालेकुम असलाम चवंदा मेरापुर खां मेरापुर वारनि खे यादि आयो जी हा बिल्कुलु अदा साईं मेरापुर वारा बि मूंखे यादि आहिनि ॾिसो तॾहिं त मां मेरापुर वारनि जो नालो खयो न मुंहिंजा मिठा साईं मूंखे जेकर मेरापुर वारा यादि न हुजनि हा शाहिद बबर जी कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं शाहिद बबर तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं तव्हां दिलजाए कयो ऐं अदा आबिद हुसैन स्पेशली मां तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो राशिद अली ख़ासि खिली पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधनि पिया चवंदा अस्सलाम वालेकुम या अली मदद वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद महिरबानी मिठा तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया

हमीरपुर खां असांखे लिखंदा आहिनि, 78 मोरी खरा जे हमीर चंद्र, किश्वर कुमार, पवन कुमार ऐं टेलर मास्टर आहे हीरा लाल ऐं उन्हनि सां गॾु आहे अरबाब अली। त अदा साईं तव्हां मूंखे बिल्कुलु यादि आयो, मां तव्हांजो नालो न खयो बल्कि मां ईअं चयो त मूंखे मीरपुर वारा दोस्त लाइ किथे हलिया विया आहिनि ऐं महिरबानी आहे। अदा जन चवनि था हाउ आर यू, अदा मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां, तव्हां जूं दुआऊं आहिनि ऐं चवंदा सलाम त वालेकुम असलाम मुंहिंजा भाउ, महिरबानी, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, तव्हां अहिड़े तरीक़े सां असांजे शो में शामिल थींदा रहो। त हिकिड़ो ॾाढो दिलशीर थी वञे जी आवाज़ में मूं वटि कलाम आहे, अचो त उन खे इंजॉय कयो।

दिलशर्ती उन्हनि जी ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समातूं त मुंहिंजा मिठा साईं तव्हां बि दोस्तनि जा कुझु मैसेजिस आहिनि उहे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं। त शहबाज़ अली पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे ॻोठु माड़ीअ खां। अदा शहबाज़, तव्हांखे मां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो। पहिरियों दफ़ो तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, लख कुर्ब लख अहसान अवांजा ॻोठु हाजी मोहम्मद शरीफ़ डेपर खां हालाणी जी वेझो हाजी मोहम्मद शरीफ़ डेपर जो ॻोठु आहे जिथां खां असांखे ॿुधी रहियो आहे। वाजिद अली डेपर, अरमान अली डेपर, ज़िशान अली डेपर ऐं चवंदा कलाम ॿुधरायो। हाज़िर पंहिंजा मिठा साईं, तव्हांजो ॿियो मैसेज आयो आहे, तव्हांखे मां अहमद मोकिल जो ज़रूरु कलाम ॿुधाईंदुसि। तव्हां दिलि चाहे कयो असांजे प्रोग्राम में असां सां गॾु आहे भाउ चवे थो, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आपका शो नाइस है पनो अकल खां। सैयद इमदाद अली शाह बुखारी साहब, साईं साईं मुझो बिस्मिलायूं, खुश हो, ठीक हो, तबियत सही है तवाजी? वालेकुम असलाम, मां बिल्कुल ठीक ठाक आया। मेहरबानी तवा असाजे शो के पसंद करे रहा हो। अदाजन जा दोस्त आहिनि गुलशेर मंगरियो, मोहम्मद ताहिर लुंड, जवार मोहम्मद बचल शबाणी, मोहम्मद डिनू सूमरो। अदाब तव्हांजा बचल शंबाणी साहब त मैसेज सवेल कयो हुयो, ज़रूरु उहो शो ॿुधी रहियो आहे। बाक़ी मोहम्मद ताहिर लुंड ॿुधे पियो या न पियो ॿुधे,

ऐं का ख़बर नाहे, अगरि ॿुधंदो हूंदो त तव्हांजा सलाम उन तोड़ी पहुची विया आहिनि त महिरबानी आहे मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हांजा कुर्ब जो तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। मोहम्मद यासीन गुज़ारो पंहिंजो प्रोग्राम हुजी रहियो आहे ऐं मूंखे पक आहे सकरण खां ॿुधंदो आहे असांखे ऐं चवंदा अस्सलाम वालेकुम। अदा त वालेकुम अस्सलाम, अदा कीअं आहियो? अदा मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां, ॾाढो वी आई पी लॻो पियो आहियां। ऐं तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो त भई सही आहे तव्हांजी। अदा यासीन तव्हां फरमाइश कई आहे त मूंखे फोटे ज़रदारी जी कलाम ॿुधायो त हाज़िर मुंहिंजा मिठा अथई, छो न तव्हांखे फोटे ज़रदारी जो कलाम ॿुधाईंदासीं, बिल्कुलु तव्हांखे फोटो ज़रदारी जो बि कलाम ॿुधाईंदासीं। त अहिड़े तरीक़े सां मुंहिंजा साईं तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था ऐं शामिल थियण जो तरीक़ेकार ॾाढो सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, एमआरओ लिखो स्पेस जो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो लिखी करे मोकिलियो असां 888-1 ते। त रऊफ मक्सीअ जी ख़ूबसूरत आवाज़ आहे, अछो त हुनखे इंजॉय कयो।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब,
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मरत

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: अब आज की मशहूर मारू खानदानी होमियो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हम लोग तो भी तरह सब दिन की मिठन बैरन भारत में बैरन के प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में भूलिकार तय प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती तमाम जीएफएम नेटवर्क का मुझे रहा आयो दोस्तों जो कुछ मैसेजेस भी आयन वे भी पानी प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं से तां जे पसंद जा सॉन्ग भी इलाही सारा आयन वे हलाण आयन त असन जे प्रोग्राम में सस गदा है के रहे अदो अदो चवे थो गुलाब भाई सॉन्ग सुनाओ ममताज मौलाई का हाजिर था ममताज मौलाई जो तां के कलाम रंगा से डॉक्टर जवार मोहम्मद बच्चल शंबाणी के डेडिकेट करे थो मोहम्मद ताहिर लुंड के गुलशेर मंगरियो राशिद लाखो रियाज जिसकाणी एम दिनू सुमरो के हाजिर था तानी पसंद कलाम जरूर तक ममताज मौलाई जहा खोड़ सारा कलाम है बहरहाल पानी मर्जी से तहो कलाम बुधाया तो ममताज मौलाई जो तहे भी अला कद पसंद अची वो गोठ खमीसो खान डायरी का मोहरम लगारी पे प्रोग्राम बुधी रो उन मोहम्मद लगारी अदा खमीसो खान डायरी वा दोस्त तट असो प्यारो नजर भी रहे तो बुध है तो वो ठीक ना उन तबियत सही ना अल असि उनके खुश रख सलाम चोजोस मुझा तमाम घना अस दुआगू आय अल्लाह तला उनके सेहत त फरमाय पुरानो लिसनर है असाजे रेडियो से इलाही उन मोहब्बतू आन कनेक्टेड रहो है कमीसो खान डायरी जो नेकमर्द है मदर डायरी साहब आई अल असि उनके सेहत रिंदो सेहतयाब इनशाला तला ठीक ठाक थी वो अदा मेहरबानी तवजी तुम प्रोग्राम में शामिल थे लगारी साहब अल्लाह साईं तव्हांखे खुश ऐं आबाद रखे असांजे प्रोग्राम में असां सां गॾु आहे सानिया समी से अच्छा सानिया समी ॻोठ आहे या हुन जी कास्ट आहे मूंखे सम्झ में ॻाल्हि न बि अचे पर चवे थी अस्सलाम वालेकुम त वालेकुम अस्सलाम सानिया कीअं आहियो तव्हां ठीकु आहियो तबियत सही आहे तव्हांजी उमेद अलाह ताला तव्हां जे ख़ैरियत कई हूंदी असांजी दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि तव्हां बि चयो त पोइ असांजे शो में शामिल थिया आहियो हुनजे करे स्पेशली मुंहिंजे तरफ़ खां तव्हांखे खोड़ दफ़ा भलीकार त मोरो खां असांखे ॿुधी रहियो आहे दरबान लगारी ऐं हुन सां गॾु दिलशेर लगारी ऐं चवंदा सर असांखे कलाम ॿुधायो इमाम बख़्श सरदारी जे आवाज़ में हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं हाज़िर हाज़िर छो न ज़रूर तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ऐं मोरो लॻे निम स्टाफ सांगी खां लिगारी पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो अच्छा निम स्टाफ खां सांगी खां लगारी पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे चवे थो अदा अस्सलाम वालेकुम त वालेकुम सलाम मुंहिंजा मिठा साईं अदा ख़ुश आहियो जी हा मुंहिंजा राणा मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां तव्हांजी दुआऊं आहिनि ऐं चवंदा असांखे सोडल फ़क़ीर जे आवाज़ में कलाम ॿुधायो हाज़िर मुंहिंजा साईं सोडल फ़क़ीर ॾाढो त लाजवाब ॻाइणो आहे मूंखे यादि आहे सोडल फ़क़ीर जो इंटरव्यू हिते पंहिंजे एफ एम रेडियो 88 मोरो ते मुंहिंजो थियल आहे सोडल लिगारीअ सां ऐं ॿिनि कलाकनि जो इंटरव्यू हुयो काफ़ी हुन पंहिंजे बारे में ॿुधायो काफ़ी समुझायो ऐं मौसीक़ीअ जे हवाले सां सोडल फ़क़ीर जो आवाज़ माशाल्लाह ज़बरदस्त आवाज़ आहे ऐं ज़रूरु तव्हांखे हुन जे आवाज़ में कलाम ॿुधाईंदासीं महिरबानी मुंहिंजा मिठा डेडिकेट कंदा मीरसन लेगारीअ खे ऐं इमरान लगारीअ खे महिरबानी मुंहिंजा मिठा तव्हांजा लख कुर्ब तव्हां असांजे शो में शामिल थियो मुगल जी खूबसूरत आवाज़ आहे तव्हांजे सिंधत समातूं

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू सुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे नकी करो ले।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सॉन्ग सुनाओ। रऊफ मक्सी जो फरमाइश कई है, कंपेरिजन ढी सुठी है। महरबानी साईं इमदाद शाह साहब, रऊफ मक्सी जो मैं कलाम बुधा चुको आया, मुमताज मौलाए के कलाम की भी पूरी पूरी कोशिश कदस, पर टाइम तमाम थोड़ो वही बचो है, जैसे लाइ जर प्रोग्राम ही न तो इनशाला नेक्स्ट प्रोग्राम ही जरूर तक पसंद जो कलाम बुधा वो। गोठ मोहम्मद इब्राहिम संदीलो का मोहम्मद हारून संदीलो प्रोग्राम बुधी रो है। अदा हारून तहे पसंद जो कलाम यानी रऊफ मक्सी के आवाज में कलाम ऑलरेडी मैं प्ले कर चुको आया। इनशाला तला हयाती रही, ईंदड़ जुमे जी वरी घर पा गड हुंदी तो तहे पसंद जो कलाम जरूर बुधाए बो, दिल जाए कर दिल वरी कर। असान प्रोग्राम गए रोजीना लगारी फ्राम फुल सिटी चवन थी सभी बुधण वारे खोड़ सारियूं दुआऊं सलाम। वालेकुम सलाम रोजीना, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो हुते? बसि सही आहे तव्हांजी, अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखंदो। तव्हां पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे शो में शामिल थिया आहियो, मुंहिंजे तरफ़ खां स्पेशली तव्हांखे असां भलीकार चऊं था ऐं आबाद हुजो। खोड़ सारियूं दुआऊं तव्हांजे लाइ असांजूं आहिनि। ऐं ॿियो तव्हां जेको लिखियो आहे, सच पुछो त मूंखे सम्झ में कोन आयो आहे, मां ॾाढो पढ़ण जी कोशिशि कई आहे ऐं टाइम बि थोरो वञी बचो आहे। महिरबानी तव्हांजी, इनशाला नेक्स्ट जुमे वारे ॾींहुं वरी तव्हां मुंहिंजे शो में ज़रूरु शामिल थीजो ऐं तव्हां शामिल थी करे बहितर तरीक़े सां लिखी करे इहे शयूं जेके आहिनि उहे असां मोकिले वठिजो। तमामु घणी महिरबानी तव्हांजी, अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे। दीदार मरी ॻोठ माड़ीअ खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, महिरबानी अदा दीदार, ख़ुशि हुजो सलामत हुजो।

प्रोग्राम जो वक्त पहुची वियो आहे। पंहिंजी पुॼाणी ते वञण खां पहिरियों तव्हांखे चवंदासीं पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखिजो। अॼु जुमे जो भलारो ॾियारो आहे, निमाज़ ज़रूर पढ़िजो ऐं निमाज़ दौरान असांखे पंहिंजे दुआनि बि ज़रूर यादि रखिजो। दुनिया क्लाइमेट्स चेंज यानी मौसमियाती तब्दीलियुनि खे मुंहुं ॾेई रही आहे। हर प्रोग्राम में मां तव्हांखे चवंदो आहियां तव्हां बराए करम पंहिंजे तरफ़ खां वण ज़रूर पोखियो। ॾिसो हिकिड़ो वण कटण में त अधु कलाकु या कलाकु लॻंदो आहे, पर उहो वण वरी ॿीहर तयारु थियण में 10 साल लॻी वेंदा आहिनि। उनजे करे जेकर तव्हां अॼु खां ई इहा तयारी कंदा आहीं इन भरपूर मुहिम में हिसो वठंदा त इन 10 सालनि खां पोइ असांजी सिंध बटारी सरसब्ज़ थी वेंदी, शादाब थी वेंदी ऐं इहा जेके गर्मीअ जे अहिड़ा सूरत हालूं आहिनि उहे मुकमल तौर ते ख़तम थी वेंदियूं। त छा कंदव तव्हां पंहिंजो वण हिकिड़ो ज़रूर पोखींदव ऐं उहो वण पोखे करे पोइ वरी तव्हां मूंखे ज़रूर ॿुधाईंदव ऐं उमेद कयां थो त मुंहिंजो इहो चवणु तव्हां ज़रूरु वठंदा। पंहिंजे न्याणियुनि खे पुटनि खे तालीम ज़रूरु ॾिजो ऐं निमाज़ जी पाबंदीअ सां गॾु नबी करीम सलाहु आल वसलम जे मथां दुरूद कसरत सां पढ़जो ऐं उन दौरान मूंखे पंहिंजे दुआनि में ज़रूर यादि कजो। वीदे वीदे हदीका कयानी जो हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो शायदि 250 शायदि इहा वर्सी हली रही आहे। त उन मुनासिबत सां ही हदीका कयानी जो बि सॉन्ग प्ले कयो वञा थो। इंशाल्लाह ताला हयाती रही त वरी ईंदड़ जुमे ते 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं पाण गॾु हूंदासीं। तेसि ताईं जे लाइ पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण

0: lots of fun, loads of mistake.
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GFM की आवाज
3: सिंधी वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे.
4: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Dex Ointment.
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार.
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर
6: सफीर जी वाखाण कई बिन्हीं मुल्कन में सिधी रीत उडामन वारे कोशिशन जी बेसहारा. बोर्ड ऑफिस में मास ऐं बेन वेड़ाक तंजीमन पारां हथियार फिटा करण मरहले वार निकाली वारो मुआदो थी वियो आहे. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जी दावा. सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त जीअं ई हमास हथियार फिटा कंदो इसराइली फौज गज़ा खां ॿाहिरि निकिरी वेंदो. मुआदो नई फलस्तीनी हुकूमत जे क़याम लाइ अहम अघुराई आहे. मुआदे ते मुंज़िम तरीक़े सां मरहलेवार अमल दरामद कयो वेंदो. आलमी इस्तेकाम फोर्स फलस्तीनी फोर्स सां गॾिजी ज़िमेवारियूं संभालींदी. हमास सुरंगनि जो नेटवर्क हथियारनि जो ज़खीरो ऐं हथियार ठाहिण वारो मशीनरी ऐं हंध तबाह करण समेत फ़ौजी ढांचो ख़तम कंदो. नेटवर्क हथियारनि जो ज़खीरो ऐं हथियार ठाहिण वारो मशीनरी ऐं हंध तबाह करण समेत फ़ौजी ढांचो ख़तम कंदी.

0: हिंगर्ज मवासलाती निज़ाम ऐं गोदामनि खे निशानो बणायो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालेबाफ चयो आहे त अमेरिका खे कश में ईरानी शहरनि ते हमले जी घणी क़ीमत अदा करणी पवंदी। कोटली जे इलाइक़े साइट में क़ौमी अवामी तहरीक जे अॻवान शबीर सांध जो घर मां गलो कपियल लाश हथायो आहे। वारसनि मूजिबि शबीर सांध राति घर में अकेलो हो। ख़बर नाहे खेसि कंहिं क़तल कयो आहे। पुलिस वाके जी जांच करे रही आहे। असांजी कंहिं सां बि दुश्मनी नाहे। जमाबाद में मुबैना पुलिस मुक़ाबले में मारियल नौजवान जो वारसनि लाश रखी धरणो हयो। वारसन जो चवण आहे त पुलिस कूड़े मुक़ाबले में नौजवान अली हैदर बुलेदीअ खे क़तल कयो ऐं बख्शर बुलेदीअ खे ज़ख़्मी कयो आहे। मुलविस अहलकारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। शहरयार शहर जे पुट जहांगीर शहर जे मुबैन अगवा केस में नामज़द मुख्य जवाबदार राउती जे कचे वारे इलाइक़े मां गिरफ़्तार। पुलिस जवाबदार जतोई शहर ऐं संदस साथी दोदो शहर खे गिरफ़्तार कयो। कुझ ॾींहं अॻु जहांगीर शहर कचे वारे इलाइक़े मां मुबैन अगवा थियण बाद कुझ ई कलाकनि में बाज़ियाब बि थियो हो। हिकु वण सिंध अमर जे नाओ मोम जारी। केटीएन न्यूज़ ऐं कावस जे सॾ ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मुहिम जारी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी आहे। सिंध खे सरसब्ज रखण वारे अज़म जो बेवरजाव।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: झुरियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
3: GFM 91.6।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।

0: This time check is brought
1: to you. Glow Bleach JKD. Good Naram I Roach. Diamond Glow Bleach. Sabi Dard.
2: Kamar Dard ya Patthu ki Suji.
1: Alvida.
2: Fakiri Dex Ointment ke saath. Bahi Fakhriya Pesh.
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Ye Ointment.
1: Har jagah par aasani se jazb hokar.
2: Dard, Sozish.
1: Aur Akadan se aaram pahunchane mein madad deta hai.
2: Asabi Dard, Jodo ka Dard.
1: Gardan aur Kamar ki Takleef.
2: पट्ठों के खिंचाव मोच
1: चोट पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद
1: मुतासरा जगह पर दिन में दो से तीन मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
1: तेज आराम मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध की आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के रियासत जी जरूरत आहे। बलूचिस्तान जे वॾे सिंह आउट परेड खे खिताब कंदे चयो आहे त सरफराज बुगटी चयो त बलोच क़ौम खे अहिड़ी जंग तरफ़ धिकियो वियो आहे जंहिं में हासिल कुझ न थींदो। बलूचिस्तान जा माण्हू रियासत सां गॾु बीठल आहिनि। राह हक़ ते हलण वारनि लाइ असांजा दरवाज़ा खुलियल आहिनि। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ हिकु इंच बि पोइते न हटंदासीं।

कोटली जिला के साइट में कौमी अवामी तहरीक जगवान शबीर सांध जो घर में गलो कपियल लाश हथ वारसन मौजूद शबीर सांध रात घर में अकेलो हो खबर ना है खेस कें कतल किया है पुलिस वाके की जांच कर रही है असा जी कैसा दुश्मनी ना है।

0: जगमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारियल नौजवान जो वारसन जो लाश रखी धरणो। वारसन जो चवण आहे त पुलिस कूड़े मुकाबले में नौजवान अली हैदर बुलेदी के कतल ऐं बख्शल बुलेदी के जख्मी कयो आहे। मुलविस अहलकारनि खिलाफ़ केस दाख़िल करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। जलालपुर केटाल खिलाफ़ अमल न कयो। जलालपुर केनाल में पाणी छोड़ करे सिंध जे हक ते धाड़ो हयो वियो आहे। तकरारी केनालनि जे खात्मे ऐं सिंधूअ ते धाड़े खिलाफ़ जिदोजहद जारी रहंदी। शहरयार शहर जे पुट जहांगीर शहर जे मुबैना अगवा केस में नामज़द मुख्य जवाबदार राउती जे कचे वारे इलाइक़े मां गिरफ़्तार। संदसि साथी दोदो शहर खे गिरफ़्तार कयो। कुझु ॾींहं अॻु जहांगीर शहर कचे वारे इलाइक़े मां मुबैना अगवा थियण बाद कुझु ई कलाकनि में बाज़ियाब बि थियो हो। हिकु माण्हू सिंध अमर जे नाओ मुहिम जारी। केटीएन न्यूज़ ऐं कावस जे सॾु ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मुहिम जारी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां सिलसिलो जारी। सिंध खे सरसब्ज रखण वारे अज़म जो बि वरजाओ।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुसिक्स
3: क्ली हीट सोप का बेहतरीन जरिया
4: पिकली
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम पिकली
3: झुर्रियों छानों से हिफाजत के लिए
4: फकीरी नीम पिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरत।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ कर काम करने और होने वाली घुमरियों खारिश मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली
3: कीजिए।
5: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
2: हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जिल्द को गहराई से जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
4: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सुन जो आवाज
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
5: सुन जो आवाज बुधंदा रहो
7: कोक स्टूडियो सीजन 9

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
2: तो पोई तू फकीरी डेक्स
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
2: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थेल हंद ते आसानी सा जज़ब करण में मदद दे थी ना दा आस तकलीफ सट धक लगण पुराणन जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे
1: इस्तेमाल किए कजे
2: हमें बचमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझ हाशमी जो प्रोग्राम लगी डंते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।

0: और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.1
0: हीट सॉप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
0: फकीरी नींद पिघली
2: सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बेडुक जो कई बने कार्रवाई कई बने।

दुश्मन क़ुवतूं बलूचिस्तान खे गैर मुस्तक़िम करण जूं कोशिशूं करे रहियूं आहिनि। सूबे में सूरतहाल कुझु ख़राब थी रही आहे। मुल्क में अजीब साज़िश थी रही आहे। सियासी जमायतनि खे चवां थो, सियासत खे दहशतगर्दी सां न ॻंढियो। रियासत खे सियासत न पर रियासत खे रियासत जी ज़रूरत आहे। बलूचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज भुक्तीअ जी ATM ट्रेनिंग स्कूल कोयटा में पासिंग आउट परेड खे ख़िताब। सरफराज भुक्ती चयो त बलोच क़ौम खे अहिड़ी जंग तरफ़ धिकियो वियो आहे जंहिं में हासिल कुझ न थींदो। बलूचिस्तान जा माण्हू रियासत सां गॾु बीठल आहिनि। राह अॻिते हलण वारनि लाइ असांजा दरवाज़ा खुलियल आहिनि। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ 1 इंच बि पोइते न हटंदासीं।

हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मेहरान की रे गुंदा हुआ। आवाज की डोर से बंधा हुआ
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज,
2: जे FM 91.6।

0: मेरा हेटर फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
5: Yeah!

0: फकीरी हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से है।
1: फकीरी
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने की वजह से मुरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी ग्लोइंग स्किन करा अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: का दुश्मन न जा सदाम सोलंगे।
1: शहर गौसपुर का फरमाश असो प्री प्यारो भा अब्दुल सतार भयो मिस्त्री नूर हसन बिजारानी करमपुर का एहसान नसीरानी होटो अब्दुल हई मलिक होटल आरो हनीफ मलिक होटल आरो जी फरमाश शहर सखर का शाबान लाखे जी फरमाश
0: एडी न कैजी यारिया
1: उसा निजाकत जड़ी दादन फकीर जी खान कोरार जी यार।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम,

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

ये सुनहरा दौर जब अपने अंजाम को पहुंचता है तो घर का माहौल किसी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा होता है जनाब, और फिर घमसान की लड़ाई होती है, घमसान की लड़ाई बच्चों की अपनी फरमाइशी होती है जनाब, और पेरेंट्स सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो जनाब अब बिल आखिर छुट्टियों का आखिरी दिन और हंगामा आ रहा है खत्म होने वाली है, और होमवर्क की आखिरी रात है जनाब, कर लीजिए होमवर्क। और दो माह सुकून से गुजरने के बाद आखिरी रात भी तारीखी रात होती है दोस्तों, वैसे आपस की बात होती है। जब अधूरी कॉपियां टूटी हुई पेंसिलें और गुमशुदा रंग याद आते हैं, पूरी रात जाकर ऐसा होमवर्क किया जाता है जैसे देखकर उस्ताद भी सदमे में आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई। दो माह से जो बस्ते होते हैं वो बेड के नीचे किचन के कोने में पड़ा हुआ बस्ता बाहर निकाला जाता है, जिसमें से पिछले साल की आधी खाई हुई चॉकलेट और बराए कागजात बरामद होते हैं जना, पुराने जो बरामद होते हैं। भी बेचारे जो सुबह 11 बजे सोकर उठते थे बच्चे और उनके पेरेंट्स, अब उन्हें सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले उठना पड़ेगा, अलार्म की किसी हॉरर फिल्म के सायरन से बिल्कुल कम नहीं होगी। तो जनाब ये सारी सब चीजें रूटीन में आप अशफाक न्याजी के साथ हैं, और जनाब हम आते रहने वाला है कब तक, अब शाम के 7 बजे तक, क्योंकि जनाब हम चाहते हैं कि आप एंटरटेन हो, आप हमारे गाने आ जाएं और भी बरकरार रहे। कॉल आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे जो है नंबर पे, जिस पे आप हमेशा हमें कॉल करते हैं, हम आपको पहला गाना सुनवाएंगे उससे पहले, फिर उसके बाद आपकी कॉल लेंगे, लेकिन नंबर आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आप हमारे से रबते में आ जाए। नंबर है 03001134880300001348 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। खैर जनाब बातें तो बहुत होंगी और बहुत सारी बातें मैंने अभी तक आपसे करनी है, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं अभी आपके साथ आया हूं, 2-3 जुम्मे गुजार कर छुट्टियां मारकर, और जनाब जुलाई की छुट्टियां एंजॉय करके। खैर मैं गाना प्ले कर रहा हूं आपके लिए, तो आप इस गाने को जरूर सुनिएगा, आसिम अजहर का बहुत प्यारा सा गाना मैं आपके लिए प्ले कर चुका हूं, तो आप इस गाने को सुनिएगा, सुनते रहिएगा GFM88 नेटवर्क से, आपका अपना शो है आई लव यू ऑल विद अस। 7 बजे तक मेरे साथ रहना है, आपने मुझे छोड़ के कहीं मत जाइएगा, तो एंजॉय कीजिए ये सुपर हिट सा माय फेवरेट सॉन्ग।

0: जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन. अजहर, आसिम अजहर का बहुत प्यारा सा गाना आपने सुना और वापस आ चुके हैं आप मेरे साथ एक बार फिर से. तो जनाब, अब आपको बिल्कुल देर नहीं करवाते, आपकी कॉल लेते हैं क्योंकि आप भी बड़े बेसब्रे, बड़े उतावले हुए जा रहे हैं हमसे बात करने के लिए और लिसनर्स तक अपने जज्बात पहुंचाने के लिए. हमारा नंबर है जनाब, क्या हमारा नंबर है जनाब? 03000113488. तमामों के कॉल करे सको था आई शाम 7 बजे ताई मा तमाम सभी दोस्त संगत आया वठो था शोध होता लाइन पे आए आखिर के. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब. केर असा सबनी सा गरई किथा प्या गलायो? पनवा अंकल का इधर भा, के हाल चाल सब ठीक ठाक आयो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. दा तमा यू बुधायो त तमा छा कंदायो मुजा जानी? माशाल्लाह माशाल्लाह. गर्मी में कोई प्रॉब्लम तो कोन थींदी आहे? गर्मी में पोक करण ॾाढी ॾुखियाई थींदी हूंदी. अच्छा, त छा था पोखियो हिन वक़्तु ज़मीन में? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. त घणो हे टाइम खाईंदी, माना घणे अरसे में तयार थी वेंदी
1: पोइ?
0: अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. इंदर साहब, इहो ॿुधायो त तव्हां असांजे शो में आया आहियो, तव्हांखे कहिड़ो गानो अॼु ॿुधणो आहे? शमन मीराली जो कोई बी तव्हांखे ॿुधायूं था इनशाला. कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? थैंक यू सो मच इंदर भाउ, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो. अदा थैंक यू. हमारे साथ जनाब बहुत प्यारे से इंदर भाई और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं. आई इन गर्मा गर्मी में जेका है, तमाम अगर लॉन्ग ड्राइव थे आयो या शहर का बाहर निकल आयो या पांजे शहर में वनो था, तो तमाम जनाब पांजी गाड़ी में असा के हलाए करे यानी कि GFMHT ट्यून करे असा के बुधे सको था इजीली. आई जनाब पांजी फरमाइश भी पूरी कराए सको था. नंबर आहे जनाब 03000 011 3488. इन नंबर से तमाम असा के कॉल कियो आई जनाब पांजी फरमाइशी सॉन्ग ॿुधे सघो था, पंहिंजे हाल दिल असांखे ॿुधाए सघो था. ऐं जनाब टेम्परेचर जी मां तव्हांखे ॻाल्हि कई, टेम्परेचर इन वक़्तु 41 सेंटीग्रेड हले थो ऐं शाम 6 बजे कुझु मौसम सुठो थियण जो अंदेशो आहे, प्रिडिक्शन्स आहिनि महकमे मौसमियात जी. हाणे ॾिसूं था त शाम 6 बजे मौसम कीअं थो थिए, छो त बारिश जी प्रिडिक्शन त मौजूदु आहिनि ऐं बारिश करे थी थी असांखे ख़बर कोन्हे, पर थींदी ज़रूर इनशाला. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम.
0: केर अदा सां सभिनी सां गॾु?
2: सर मुंहिंजो नालो इरफान आहे, सखर सर आहे.
0: इरफान भाउ सखर खां?
2: जी जी.
0: कहिड़ा हाल चाल आहिनि इरफान भाउ, छा कंदा आहियो?
2: अलहमदुल्ला.
0: छा कंदा आहियो, कहिड़ो कमु कार कंदा आहियो?
2: सर कमु त कुझु कोन्हे.
0: वॾो तव्हां माना हिकिड़ो इहो वॾो कमु आहे त कमु न करण बि वॾो कमु आहे. छा सोचियो अथव त छा कंदो माना? अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, सही आहे सही. इरफान भाई इहो ॿुधायो, प्रोग्राम तव्हांखे कीअं थो लॻे?
2: प्रोग्राम
0: जबरदस्त. हाँ, जबरदस्त प्रोग्राम में हाँ असा पेरे भाजी फरमाइश से प्ले क्यों था शमन अली मिराली जो गानो, तो तुम कैंजे नाले से करना चाहो?
2: सर
0: पांजे दोस्त के नाले.
2: जी सर.
0: ठीक है इरफान भाई, पांजो खास ख्याल रखो. था थैंक यू. हमारे साथ इरफान भाई फ्रॉम सखर. आप भी हमें कॉल कर सकते हैं जनाब और हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. खैर जनाब असां गाल कैसे मौसम जी, तो मौसम छा थींदो आ जनाब? मौसम गरम गरम लगो पियो आ, छा क्यों हाने? पर मौसम के गरम करण में असो इलाही हथ हों, छो तो मौसमियाती तब्दीलियों जो है पूरी दुनिया से रोनमा थन्दू आन, पर असा जैसे थन्दू आन तो असा बिल्कुल विफरी वेंदा आयो, असा वण भी कटे छदा आयो, असा सब्जो कटे छदा आयो, माना इन में अद हथ असांजो हूंदो आहे, त असां कीअं माहौल खे ख़राब था कयूं? असां माहौल खे ख़राब कंदा आहियूं त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पोइ गर्मा गर्मी वधी वेंदी आहे, मौसमियाती तब्दीलियूं असां ते तमामु घणो बुरो असर विझंदियूं आहिनि. असांखे खपे त असां वण जेका आहे लॻायूं ऐं पंहिंजे माहौल खे साफ़ सुथरो कयूं. वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल ऐं ॾिसूं था लाइन ते असां सभिनी सां गॾु केरु आहे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मिठा, केरु असां सभिनी सां गॾु? सॉरी मूंखे आवाज़ तव्हांजी समझ में न आई. तव्हांजो नालो छा ॿुधायव था?
2: सूमर महर, पनवा अकल.
0: सूमर महर, सूमर साहब छा हाल था, छा हाल आहे पनवा अकल में, छा कंदा आहियो?
2: हेलो.
0: जी जी हेलो. ओए होए, अनफॉर्चुनेटली कॉल ड्रॉप थी वई आहे, पर कोई ॻाल्हि नाहे, तव्हां असांखे कॉल करे सघो था जनाब असांजे हिन नंबर ते. ऐं अगरि कंहिंजी बर्थडे आहे, कंहिंजी शादी वादी बि थिए थी, त पोइ तव्हां असांखे कॉल करे सघो था. अॼु कोई तव्हांजे लाइ स्पेशल डे आहे त पोइ असां तव्हां असांखे कॉल करे सघो था, डेडिकेशन करे सघो था ऐं पंहिंजे प्यारनि खे जनाब गाना बि डेडिकेट करे सघो था. ख़ैर जनाब

0: का सूफी ठिकाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज सूफी क्रीम।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: चटानिया
1: जी जी
0: ऐं मां मोली मंदर जा जेके बि दोस्त ॿुधी विया आहिनि सभिनी खे सलाम हिकु मां ख़ासि करे तव्हांजे नाले
1: थैंक यू सो मच अदा पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो कॉल कजो अला हाफिज़ हमारे साथ बहुत प्यारे से भाई और जनाब तमाम भी असांखे कॉल करे सघो था बिल्कुल हथ ते हथ रखी करे कोन विहो ऐं जनाब छो त जेका भी कम थींदा आहिनि या जेको बि असां कामयाबी माणींदा आहियूं त उहा चुरी पुरी करे माणींदा आहियूं माना थोरो हिलचुल करे माणींदा आहियूं ऐं पंहिंजे फिज़िकली तौर ते जेको आहे अॻिते वधी करे माणींदा आहियूं सोची करे उते हिकड़ी जाइ ते वेही करे हथ ते हथ रखी करे कामयाबी कोन मिलंदियूं आहिनि दादा वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल ऐं चऊं था पंहिंजे कॉलर खे अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम मिश्ताक भाउ छा हाल आहे
1: साईं मां त बिल्कुलु ठीकु छा कयां तव्हां पंहिंजो हाल ॿुधायो छा हाल
2: आहिनि
1: यार असल में मोकिलियो हुयूं त मां हलियो वियुमि कराची इंजॉय करण लाइ छो भला छा कयो अथव हाणे लाड़काने वारा तव्हांखे लाड़काने वारा भला माण्हू अथव अलाह माना तव्हां जहिड़े तव्हां जहिड़े प्यारनि माण्हुनि खे बि ॾंभ ॾियनि था इहा लड़काइण वारा
2: तुंहिंजो प्यारो छो नथा ॿुधाइनि
1: मरी वियासीं मरी वियासीं हींअर मां शिकायत थो कयां मथे अच्छा त रिज़वान साहब तव्हांखे हद ॿुधी अर्ज़ु आहे त मुंहिंजो छो त कम अज़ कम हलाईंदा कयो अदा ईअं न कंदा कयो असांजे लड़काणे वारनि सां अलाह अकबर माना नाइंसाफ़ी मूंसां बाबा ज़ुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते असांजी आवाज़ लड़काणे में पुॼायो जीअं बि करे माना हाणे सफ़ा नथो हले वालेकुम अस्सलाम माना हाणे सफ़ा नथो हले लड़काण में अच्छा ओके ओके ओके ओके लड़काना इज़ नॉट कनेक्टेड सो असां हींअर ई कुझु कयूं था तव्हां इहो ॿुधायो त तव्हांखे हाणे गानो थो ॿुधायां फौजी सूमर वारो कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो
2: जेके बि दोस्त ॿुधंदा उन्हनि जे नाले मां त न ॿुधी सघंदमि
1: हिन पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो अदा थैंक यू सो मच
2: नालो
1: ॿुधायो हिकु दफ़ो ॿीहर
2: आसिफ अली
1: चाचर आसिफ अली चाचर थैंक यू सो मच आसिफ भा जी जनाब आसिफ अली चाचर हमारे साथ मौजूद थे उनका कहना था कि लड़काना में आपका शो नहीं चल रहा तो दोस्त हैं वो हमारे शो को सुन पाएं और जनाब हमारे साथ रहकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाएं है जनाब इस वक्त टाइम हो जाता है 5:39 टाइम इज राइट नाउ शाम के 7 बजे तक हम आपके साथ रहने वाले हैं तो हम जनाब क्या करें गाने
3: वालेकुम अस्सलाम
1: जी मुझे लगे तो सभी से गड वही जतो यार
3: न मुंहिंजा सोना साईं बलोचिस्तान जे हवाउनि में सिंध बलोचिस्तान बार्डर खां नज़ीरा मां जखरानी
1: नज़ीर भाउ जखरानी भाउ कहिड़ा हाल चाल आहिनि तव्हांजा
3: अलहमदल्ला अलाह साईं जा महिरबानी तव्हां ख़ुशि आहियो अरसे खां बाद अॼु तव्हांजो प्रोग्राम इश्फाक न्याज़ी जा तमामु यादगार लम्हा असांखे यादि आया जॾहिं 692 हले पियो उनमें तव्हांजो प्रोग्राम हलंदा तव्हांखे यादि हूंदो अलाए न असां तव्हांजा पुराणा लिसनर
1: आहियूं बिल्कुलु बिल्कुलु बलोचिस्तान वारा मुंहिंजा तमामु घणा पुराणा लिसनर आहिनि मूंखे तमामु घणो चङी तरह यादि आहे त इलाही कॉल्स इलाही लेटर्स इलाही ईमेल्स ईंदियूं असांखे असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई
3: सुबुह सुबुह जे पहाड़ में तव्हांजो प्रोग्राम तमामु ज़बरदस्त हूंदो हुयो ऐं उन खां बाद 5 खां 6 7
1: तव्हांजा
3: प्रोग्राम अॼु वरी तव्हां सां लाइव कॉल में अॼु तव्हां 88 में आया आहियो तमामु ख़ुशी थी रहियो आहे अॼु तव्हांजो हवा हवान में आवाज़ गूंजे थो सोणा साईं सिंध बलोचिस्तान में अगरि तव्हांखे एतबार न अचे तव्हांखे ॿुधायूं
1: वाह थैंक यू सो मच यार बलोचिस्तान जी हवाउनि में असांजी आवाज़ हली थी तव्हांजो तमामु घणो थैंक्स तव्हां छा कंदा आहियो मुंहिंजा प्यारा भाउ
3: सोणा साईं हिन टाइम तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहियूं
1: हा कमकार कहिड़ा कंदा आहियो
3: सर ज़मीनदारो आहे ज़मीनदारी बि आहे हारपो बि कयूं था
1: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह इहो ॿुधायो मौसम जेको आहे बलोचिस्तान जो केतिरो सोणो थी वियो आहे या गर्मी अञा ताईं आहे
3: सर गर्मी त वॾो शोर ऐं ज़ोर सां हुयो अॼु वरी बलोचिस्तान में हवाऊं हलनि थियूं सोणा थधियूं हवाऊं
1: असांजे लाइ बि दुआ कयो हिते थधिकार थी वञे कोई हवाऊं हलनि कोई गर्मी घटि थिए
3: अलाह करे मौसम हिकु ई आहे सोणा साईं मौसम बिल्कुलु हिकु ई आहे तव्हां दिलि में न कजो त मौसम बिल्कुलु हिकु ई आहे अलाह सां बि हिकु आहे हुन जा रसूल बि हिकु आहे हुन जो हवाऊं बि हिकु आहिनि
1: बेशक बेशक बेशक बेशक इहो ॿुधायो त तव्हां अॼु एतिरे अरसे खां पोइ मुंहिंजी कॉलिंग शो में आया आहियो मां फौजी सूमरो जो गानो थो प्ले कयां ज़बरदस्त हिकिड़ो
3: ऐं तमामु बहितरीन अगाड़े जेको आहे असांजो मंगरियो दोस्त संग्राम में तव्हांखे जेको आहे सो फरमाइश कई नज़र

0: हमन मंगरे साहब उनजो भी काल मां बुद्धम सोना
1: जी जी जी जी यो गानो हाने तां केजे नाले ते करना चाहो
0: हां मां इशाक नारी जे नाले कंदो छै सैयद जायद शाह जे नाले संग्रार में असन जो पीरी प्यारो दोस्त बुधी रहयो आ ए तो नजीर अहमद मंगरे साहब
1: जी जी जी
0: दरवेश खान गुलाटो अब्दुरूफ पंचरी वारो इनको अलावा इरफान जखरानी साहब जाते जाते भी मुझो आवाज वने तो समूरे पीरी प्यारन के मुंह पारा खोड़ सारा सलाम अरबेले चाचड़ के पीसी साहबन चन्ना के समूरे पीरी प्यारन के मुंह पारा खोड़ सारा सलाम मुझे
1: वालेकुम अस्सलाम पांजो नालो तो बीर बुधाइंदा हलो
0: सर नजीर अहमद जखरानी सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर वारो
1: थैंक यू नजीर जखरानी साहब सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर वारा हमेशा खुश हो जो खिलंदा मुस्कुरांदा रहो थैंक यू
0: खुश रखंदो यो आखिर में अल्लाह ताके आबाद कंदो आखिर में असान जो मंगरे साहब जो नालो वण जो गाने
1: नजीर अहमद जखरो है ना
0: नजीर अहमद जखरानी नजीर अहमद मंगरियो
1: नजीर अहमद मंगरियो भी नजीर अहमद जखरानी भाभी बिनी दे नाला सेम एंड प्रकाश डिफरेंट
0: जी सर तां जो आवाज बिल्कुल गूंजे तो सिंध बलोचिस्तान जे बॉर्डर में
1: थैंक यू सो मच आई लव यू दोस्त पांजो हमेशा नजीर अहमद मंगरे और नजीर अहमद जखरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे दोनों का कंफ्यूजन हो गया मुझे कास्ट अलग अलग थी लेकिन नाम दोनों के सेम है जनाब दोनों ही हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं और बहुत अच्छे से लिस्टनर हैं जो कि इतने पुराने हमारे लिस्टनर हैं जो कि हमें गौर से सुनते हैं और सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर पर हमें सुन रहे हैं तो हमें और क्या चाहिए जनाब जब आप हमसे इतना प्यार करते हैं और इतना हमें रिस्पेक्ट देते हैं और इतने प्यार से सुनते हैं तो जनाब जब इतने प्यार से सुना जाए तो बहुत मजा आ जाता है ना तो अब देखते हैं हमें प्यार से कौन कॉल कर रहा है लेते हैं की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
1: आए हाय लगता है इरफान हमारे साथ मौजूद है
2: लग तो ऐसा रहा भाई
1: खिबड़ी भिट वाले है ना खिबड़ी भिट होता है ना
2: नहीं भाई
1: खबड़ी भिट है सॉरी खबड़ी भिट
2: आपको पता है इसका भाई
1: नहीं
2: सबसे पहले पता है कि बात आ गई
1: क्या क्या आ गई सॉरी
2: 2015 और 16 में जब यूज करती थी ना एटीएच पे
1: हाँ हाँ
2: तो जो आई थिंक उस टाइम सिस्टर सुमेरा न्यूज पढ़ती थी
1: हाँ हाँ मैं भी लाइव पढ़ता था भैया उस वक्त
2: हाँ तो आप जो भी खबरी बिट से खबर आती थी आप उसको खिबड़ी बिट कहते थे
1: वो उस वक्त मेरी सिंधी थोड़ी टूटी फूटी थी ना आप थोड़ी अच्छी हो गई है
2: माशाल्लाह हाँ वजह की है
1: हाँ हाँ इलाज कराया पानी सिंधी जो माँ असा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कराया एआई का हाँ छो तो मुझे सिंधी ठीक करण के भी डॉक्टर जो कम न हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जो कम मुझे सिंधी ठीक करण अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्यारा भाई यो बुधायो तां जारी कीअं था गुजरन ऐं मुझे बगैर इस तरह जुमा कीअं गुजारिया
2: बस तव्हांजी याद में गुजारियूं पिया
1: अच्छा
2: अॼु पुछो त मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधो था
1: अॼु
2: तव्हां पुछो त मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधो था
1: हा हा बिल्कुल ॿुधी आहे तॾहिं त तव्हां कॉल कई आहे
2: न रेडियो ॿुधंदो तव्हांजे प्रोग्राम में था ॿुधो कंट्रोल था करे वञनि
1: अच्छा मुंहिंजे ख़्याल में त इहो लॻे थो त अॼु जेका हवाऊं हलनि थियूं न उहा सिग्नल खणी था अचनि
2: बिल्कुलु अचो कुझु कुझु अहिड़े मौसम जा माना अची वेंदी आहे मौसम
1: बिल्कुलु
2: हिसाब थी वेंदो आहे जो असांखे ईरान जा ऐं चीन जा बि स्टेशन जेके न लंबा लंबा ॿुधण में एफ एम ते ईंदा आहिनि
1: हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु चओ था बिल्कुलु
2: ऐं हींअर बि एटीएच जी फ्रीक्वेंसी मूं वटि टून आहे पर तव्हांजे झटके लाइ आवाज़ कंहिंमहिल कंहिंमहिल अचे थो न त ॿी स्टेशन थी अचे न त ॿई स्टेशन मुंझियूं पयूं न हूअ थी वञे न हूअ थी वञे
1: कंफ्यूज़ थी विया आहिनि सिग्नल त हाणे कंहिं कंहिं सां खणी अचूं कंहिंखे न खणी अचूं
2: हा बिल्कुलु हींअर काई बि स्टेशन न थी हले सिर्फ़ सवलात आहे
1: वाह वाह वाह तव्हां असांखे कॉल त कई आहे न ऐं तव्हां सां ॻाल्हायूं बि पिया त इहो ॿुधायो फौजी सूमर जो गानो हलाईंदुमि ब्रेक जी फौरन बाद कंहिंजे नाले था करणु चाहियो
2: फौजी सूमर जो सॉन्ग पसंद मोदी हलायो
1: कहिड़ो
2: सही
1: न उहो भलो भलो गानो अथव नज़ीर भाई फरमाइश कई आहे कई हथ हलाया त घोड़ा किरी पिया
2: है।
1: है।
2: लेकिन मोदी इहा फरमाइश हुई त जेके उदारिया मूं तो लाइ पकी आहे लेकिन हीउ सॉन्ग ॿुधी थो
1: इहो बड़ो ज़बरदस्त ज़बरदस्त गानो आहे तव्हां ॿुधो त तव्हां एंजॉय कंदो
2: जे न वञे त पैसा वापसि
1: पैसा वापसि एग्ज़ैक्टली
2: चलो कोशिश कंदासीं न त वरी पोइ ॿीहर मिस कॉल ॾींदोमांव पोइ कॉल
1: कजो ओके ओके ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु
2: जेकॾहिं बेलत न हुजे सुनमि त पोइ एडवांस वठी ॾींदे कॉल
1: इनशाला इनशाला ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु कंहिंजे नाले ते खणी चाहियो
2: सलाम सिस्टर मिसिस अली ऐं सिस्टर दुआ खान फौजिया फरज़ाना राय सुमर मंताज सुमर हुसैन बख़्शो हाफिज़ गुलाम अहमद साबल नज़ीर मंगरियो ऐं बचल चमाणी जेके दोस्त ॿुधनि था सभिनी खे इरफान अली चइबो करां
1: वालेकुम अस्सलाम पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो इरफान भाउ थैंक यू सो मच थैंक यू चलते हैं कदत कमर्शियल ब्रेक की जानिब जनाब फौरन और इसके बाद फौरन आप जबरदस्त गाना सुन पाएंगे फौजिया सुमर की वॉइस में

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
3: क्या नहीं हुआ
4: मुझसे निकल कौन जानता है कि कितनी मार पड़ी।
3: देख ले। अच्छा ये बताओ, आपकी स्कूल की जाने की तैयारी हो गई, बैग वैग कंप्लीट हो गया, कोई चीज रह तो नहीं गई?
4: हाँ बस हो गई है, क्या करे।
3: यूनिफॉर्म छोटा तो नहीं हो गया? क्योंकि बहुत से बच्चों का यूनिफॉर्म छोटा हो गया, खा पी के माशाल्लाह वो तगड़े हो गए। हाँ बिल्कुल, मोटे छोटे हो गए तो उनका यूनिफॉर्म छोटे हो गए, अचानक से पता चल गया वालदेन को।
4: नहीं नहीं।
3: अच्छा गुड है, वेरी
4: गुड।
3: कॉपियों होमवर्क कम्प्लीट हो गया आपका?
4: बिल्कुल।
3: वेरी गुड वेरी गुड।
4: आप इतनी चक्कर लगा रही थी, अब आप इतनी प्रोग्राम करने।
3: मैं क्या कर रहा था, सॉरी?
4: मतलब चक्कर लगा रही थी छुट्टी से।
3: हाँ मैं छुट्टियाँ एंजॉय कर रहा था ना, आखिर मेरा भी तो हक है, मैं गरीब का, मुझे जज्बाती हो गया हूँ मैं। मुझे रोना आता है जब कहते हैं कि आप क्यों चले गए थे, मैं भी तो इंसान हूँ आखिर।
4: अच्छा ये आज मुझे यकीन था इस बार प्रोग्राम करने जरूर आएंगे, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ पूरी हो गई।
3: आपकी छुट्टियां पूरी हो गई हैं? बिल्कुल जनाब, अच्छी बात है। और मैंने आना था आज, तो मैं इसलिए आ गया इंशाल्लाह। अब जाहिर सी बात है छुट्टियां नहीं होंगी तो हम छुट्टियां भी नहीं करेंगे और आपके प्रोग्राम में रेगुलर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मेरी प्यारी सी बहन, मैं फौजिया सुमरों का गाना प्ले करूंगा, किसके नाम करना चाहती हो?
4: अच्छा, भाई के नाम।
3: बस
4: हाँ,
3: चलो ठीक है, जाते जाते बारिश की दुआ जरूर कर लेना कि बारिश अच्छी सी हो जाए और सबके लिए रहमत का बायस बने। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ है जनाब बहुत प्यारी सी, हमारी लिस्ट में बहुत प्यारी सी बहन जो हमें हमेशा कॉल करती है लेकिन अपना नाम नहीं बताती हैं। कोई बात नहीं जनाब, आप हमारे साथ हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम।
3: जी जनाब, केर हमारे साथ, केर अपना सब नहीं साथ गए।
5: अच्छा माँ वफा अब्दुल वहीद जतोई तेटी शाबिलो ताल को जिलो सखरा भाजपा का।
3: अच्छा वहीद भाम, ताजी आवाज हाँ सेम नती लगी, जो तब जेको हिकड़ो पेरो पेरो दोस्त असा सा सिंध बलूचिस्तान जे बॉर्डर खायो उन जी आवाज ताजी कहां जड़ी पई लगे?
5: हां नजीर,
3: पर ताजी आवाज ताँ जड़ी न पई लगी हाँ, आज छो भला?
5: बस छाए त वरी मौसम जे हिसाब सां थधा मिठा पियूं था नी।
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही।
5: इन में कुछ गले जी ठक ठुक थी वञे।
3: हाँ माना गले में ताजी वधीक ठक ठुक थी वई आ।
5: बिल्कुल बिल्कुल यार, भाई शबाग यो असल में नंढड़ो अरदा एडी लंबी जुदाई असा सच पुछो तो जुमी ते असा हर जुमी ते चेक कंदा रे पेरी तो महरम महीनो
3: जी जी
5: वरी महरम महीने को बाद में आदा जो मत हाँ अचे पर वही लंबी जुदाई था करे वनी
3: यार इन वक्त माना इन टाइम जो आए ना इन मोकलन ते मां वाकई लंबी जुदाई करी हुम छो तो मां करीब एतरो कराची में रहो कोन आया पर इन वक्त मुझे दिल लगी हुई मां वरी घूमण फिरण में पूरो हुम तने लाए वापस अचन लाए रूह भी कोन पे कई।
5: अच्छा
3: हाँ पर वरी मोटी आस
5: गस्त टूरन ते हो असा है तो बुद्ध न बेटा ते क्यों
3: बस दा सॉरी पर हाने ये न कंदा से इंशाल्लाह ता सा गड रेगुलर इंदा से।
5: असल में ता बुदा तने बजाज क्या तने 88 जो सतो किया
3: अल्हम्दुलिल्लाह सब मस्त लगा प्यान सब इवन लगा प्यान।
5: असल में माना डरी शायरी बुधाई तो मैं पो अलग कड़ो कला बुधाई दो
3: माँ फौजिया सूरज जो गानों बुधाई तो करी जो लगा ला पर मैं अन्या प्ले न करे सकूँ आता हूँ शायरी बुधाई पो गानों
5: बुधाई माँ के फौजिया सुमरे को सुट्टो नगमो बुधाई जो शायरी चंदम तो बेवफा सा नहीं हुला तो डी उन्हें जातो
3: वाह
5: बेवफा सा नहीं हुला तो डी उन्हें जातो रोई रोई कारो वे सुपातो
3: वाह वाह
5: चवे पयो मा तो खो काडी नवी दोस्त तोड़े लिखाए वठी खातो
3: वाह वाह वाह
5: जी भाई इस पाक खातो नो तो अशार जे जान जो जा का ट्रैक्टर जो
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल दुकान जो भी तुदा
5: खातो चई वरे आखर ले काडे गए बिचो कुछ मा भाई इस पाक दोस्त दया है ना
3: जी जी जी जी जी जी
5: मैं जो भाण जो रफी को जतो गोली मार सखर का बुधे तो लेना
3: हां जरूर
5: तय खो बाद में मैं जो भाव जईर में जतो मैं जो भाटियो आया तो मैं जतो बागर देखो
3: जी जी
5: आस बचाचड़ थव लारका लिखो।
3: अच्छा
5: बाकी हाँ जेके आल टाल बुधन था वफा अब्दुल वहीद जत पारो सजे सथ के सलाम कंदा रहंदा।
3: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वफा भाई साहब, पांच खास क्या रख जो थैंक यू जी जनाब। अब हम चलाते हैं फाइनली फौजिया सूरों का बहुत प्यारा सा गाना, नजीर भाई की फरमाइश पर सुनिए और हमारे साथ रहिए।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: थी न पर क्या बात है, जरा बात तेरा सा गाना हमने आपके समातों की नजर किया। मौसम बाहर का हमारे यहाँ तो थोड़ी सी हवा चल रही है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है और न आसमान पे कोई बादल मौजूद है, लेकिन जहाँ कहीं पर भी है वो मौसम को एंजॉय करें, बादलों को एंजॉय करें और जनाब जबरदस्त तरीके से अपनी जिंदगी को जिए और हमारे शो को भी एंजॉय करते रहें। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। जनाब कौन हमारे साथ मौजूद?
1: भाई आप पहचानो नहीं, कौन आपसे छपा?
0: मेरे साथ कौन है, कौन है जनाब? खोसो साहब हैं और मुझे नाम भूल जाता है अमूमन।
1: यही तो मसला है ना, आप नाम भूल जाते हैं।
0: जख्मी खादिम हुसैन खोसो।
1: हाँ बिल्कुल सही है साहब, पहचाना।
0: क्या बात है जनाब, मेरा तुक्का बिल्कुल ठीक जाके लगा, तीर निशाने पे जाके लगा।
1: बिल्कुल आप निशाने पे तीर लगा जाते हैं, आपका निशाना गलत नहीं जाता
0: है। अरे सच के जाऊँ, क्या हाल है आपके जख्मी भाई, ठीक ठाक है?
1: बिल्कुल बिल्कुल खैरियत है, आप बताएं कैसे हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं क्या हो रहा है आजकल और कैसा चल रहा है आपकी जिंदगानी?
1: बिल्कुल अच्छा जिंदगानी चल रहा है, बिल्कुल फसल चल रहा है। और मैं भी कराची था, अभी वापस आ गया, कल आ गया वहाँ पे, तो मैं भी कराची था और कराची का मौसम सब कैसा था, कभी कैसा था।
0: हाँ
1: यहाँ पे तो बिल्कुल गर्मी है,
0: यहाँ बहुत गर्मी है, बिल्कुल गर्मी। असल में कराची में बहुत बादल थे, कभी दिन को बरसात होती थी, कभी रात को होती थी बूंदाबांदी, और हवा तो अनलिमिटेड चल रही थी।

0: हाँ बिल्कुल, यही बात है। हाँ,
1: तो ये बताइए आपको हमारा शो कैसा लग रहा है आज?
0: बिल्कुल पक्का लग रहा है, लग रहा है। मैं भी छुट्टियां दे रहा हूँ, तुम भी छुट्टियां दे रहा है। तकरीबन एक महीना हो गया, डेढ़ महीना हो गया आपकी आवाज सुनने के लिए, कान भी तरफ गए थे। मैंने बोला यार आज मेरा भी कब आएगा, कब उससे बात होगा।
1: हाँ थैंक यू, हम आ चुके हैं देखें आपके साथ, और अब आपका हमने इंतजार खत्म कर दिया। ये बताइए कि अब आपने कौन सा वाला गाना सुनना है हमारे साथ?
0: गाना तो मैं आज आपके पसंद से सुनूंगा,
1: मेरी पसंद पे
0: शमन का, कोई भी सुना दो आप।
1: शमन का, ओके ओके ओके, शमन का कोई भी। शमन का तो वैसे मैं चला लिया, मैं अपनी पसंद पे चलाता हूँ आज कोई आपके लिए।
0: हाँ अपने पसंद पे चलाओ, जो तुम्हारा पसंद है वो हमारा पसंद है।
1: ओके थैंक यू सो मच। और ये बताएं कि किसके नाम करना चाहेंगे?
0: जी मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे थेरेपी पे बैठे हैं दो, आदम खोसो और मुनीर खोसो।
1: सही सही।
0: और मेरे दोस्त हैं अब्दुल जबार खोसो, इमदाद खोसो, बख्तियार खोसो। बिल्कुल
1: अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और किसी को कोई पैगाम देना चाहेंगे, डेडिकेशन करना चाहेंगे किसी को?
0: नहीं नहीं अभी तो अब नए नए आए, किसी को डेडिकेशन किसी को मैं आज किसी को क्या दें यार। अभी तो अपने आप को ही, अपने आप को ही है।
1: सही सही सही सही सही सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आदा थैंक यू सो मच। जख्मी भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
0: मेहरबानी मेहरबानी,
1: ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जख्मी खादिम हुसैन खोसो साहब, और जनाब आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। ओए होए होए, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, क्या कह रहा, खुश आयो?
1: ठीक ठाक मुझा प्यारा भाग, खेर असा सबनी सा गड,
2: अल्लाह खुश कंदा,
1: खेर असा सबनी सा गड। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल रज़ाक जूनी जो साहब, के हाल चाल तब ठीक ठाक आए हो? कितना मना ड्रिगपुर खां
2: कचे मन मिर्दापुर खां हेठा आयो।
1: अच्छा गोडा गोडा गोडा, जूनी जो साहब छा कंदा आयो?
2: पोख पांजी कना बनी बारो आए।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, की हले तो ताजो कमकार?
2: शुक्र है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
1: जबरदस्त जबरदस्त। यो बुधायो तो ता के से शो के लगंदो आ?
2: शो प्यारो लगंदो आ, ता नसरा थोड़ी कम थी अचे,
1: सिग्नल प्रॉब्लम हुंदी का?
2: अगे मूड भली इंदी हाँ घटे बे महीना थी था।
1: अच्छा तो असा पांजे टेक्निकल जेका हे कंसर्न डिपार्टमेंट उनसा राबतो कयूं ता, दिसूं ता त छो नथी अचे? इनशाला इनशाला तव्हांजे सही अची वेंदी। तव्हां इहो ॿुधायो त जेको हाणे मां मुमताज़ लाशारी जो गानो थो प्ले कयां, सिर लॻे सोणे सॼण सां सिर लॻे, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? अच्छा सिर्फ़ हा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: हा असां प्रोग्राम ॿुधंदा आहियूं ॿुधंदा आहियूं, पर तव्हांजी कॉल घटि लॻंदी आहे, कॉल घटि कंदा
1: आहियूं। अच्छा सही सही, न न तव्हां ॿुधंदा आहियो, असांजे लाइ खोड़ आहे तव्हां
2: ॿुधंदा आहियूं।
1: हा जबरदस्त जबरदस्त, जूनेजो साहब ईअं ई ॿुधंदा
2: आहियो?
1: वाओ ग्रेट यार, 106.2 ते जेका मां हूंदो हुयुमि।
2: हा उन ते ॿुधंदा
1: हुआसीं। हा थैंक यू जूनेजो साहब, तव्हांजा कुर्ब घणा, थैंक यू सो मच, थैंक यू जुनेजो साहब। हमारे साथ बहुत प्यारे से जुनेजो भाई, और जुनेजो भाई के बाद अब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। आप हमें कॉल करें जनाब, और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि शाम के 5 नहीं 7 बजे तक हम आपके साथ हैं, 5 बजे तक तो हम आते हैं। 03 00 और 01 13 03 00 01 3488 हमारा नंबर है। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, अच्छा के आलम खुश आयो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, खैर असा सबनी सा गड।
3: मेटा मानो कुर्बान अली हस्ती जो बने मोठा जी गुलाम का,
1: क्या बात है कुर्बान भाई की। कुर्बान भाई कैसे हैं आप?
3: वालेकुम भैया अल्हम्दुलिल्लाह, पा जोरी में सब लगी भैया है दखन जी सदन से ले आओ अलग।
1: हां बाकी दखन जी तो तमाम घणी सुठी हवाओं ताडे हलन पियो, असा दे घट घट पी हलन।
3: हां बिल्कुल, तो असा परे हो असा वाली समुद्री जी इलाका जी हवाओं में तो असा वाली जो को लाड़ के इलाको सादी पट्टी गर्जे थी ना इलाको गद लगे तो ये आऊं जी छुट्टी लगे।
1: हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कुर्बान भाई ये बुधायो त जेको आए हाँ ताजे गर्मी घट थी वही है माना?
3: हाँ गर्मी घट थी है, पर आज गर्मी थोड़ी जोर हुई थी, जो 41 सेंटीग्रेड हुयो।
1: अच्छा पर इते 41 हुयो भा, ताजे 31 हुयो तो 41 हुयो।
3: हाँ इन करे जो कुछ बरसात जो इशू आए मुमकान अचन इन करे तो माना सेंटीग्रेड वधी वियो।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अलाह भलाई कंदो।
3: पहिरीं माना हवाऊं ॾिसियूं उहे बिल्कुल जेकी हुयूं ताप ते हुयूं थधो हवाऊं
1: जबरदस्त जबरदस्त, पर इते त सफ़ा 62 लॻो पियो
3: आहे जी,
1: इते सफ़ा 62 लॻो पियो माना सफ़ा।
3: हा माना अॼु त थोरो 62 वारो नमूनो हुयो, पर हाणे माचारा मौसम सॼी थी
1: वियो। चलो सुठी ॻाल्हि आहे।

0: ਦਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਲਾਸ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪਲੇਕਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਥਕਣ ਚਾਹੇ ਹੋ?
1: मां
0: मोकिलियन ते वियुमि कराची घुमण फिरण वियुमि इन लाइ न अची सघियुमि।
1: चलो ठीक है ममता लाचारी को सुठो आवाज बुधराइजो हाँ प्रोग्राम कंटिन्यू थींदा न
0: इनशाला इनशाला जरूर
1: इंशाल्लाह।
0: थैंक यू सो मच सदाइंगर जी। जनाब हमारे साथ कुर्बान खास के लिए और अब हम चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मुमताज लाशारी का गाना सुनवाएंगे आपको, कहीं मत जाइएगा।
2: नूरो नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज जीए FM 88 नेटवर्क। खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एंड जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
4: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
6: yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हा बिल्कुल बिल्कुल, कहिड़ो गानो ॿुधायां शमन जो?
1: गानो जेको तव्हांखे सुठो लॻे, बहितरीन शमन उहो ॿुधायो।
0: ओके, मां शमन जो तव्हांखे गानो थो ॿुधायां। कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो?
1: बस इहे जेकी संगत ॿुधाईसीं।
0: ठीकु आहे ठीकु आहे, मां हींअर थो प्ले कयां।
1: इहो कोशिशि कयो त इहो दिलि वठी मूंखे धड़का न ॾियो।
0: इहो गानो हाणे मां प्ले करे चुको आहियां। ए दिलि चरी रोंदी न कर, ठहंदा नी दिलि भर क्या करां। ए चरी रोंदी न कर, ठहंदा नी दिलि भर क्या करां। इहो गानो ॿुधो, एंजॉय कयो। थैंक यू सो मच गुलाब शाह साहब।
1: ओके।
0: हमारे साथ है जनाब गुलाब शाह साहब, और गुलाब भाई को हम सुनवाते हैं बहुत प्यारा सा गाना। इस गाने को सुनिए और हमारे साथ रहिए।

0: जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़ उधरदा रहो।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए एफएम नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
1: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
6: yeah!

0: perché McCrino.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: यार कुछ दिन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
2: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जिए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: ट्रायल जल्द आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए FM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदल।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: मुल्क जी आबादी चवण ते वधी वई आहे। सूबा साॻिया ई चार आहिनि। 1972 ईस्वी में आबादी 7-8 करोड़ हुई, हाणे 25 करोड़ आहे, त कुझु सोचणो पवंदो। आबादी एतिरी वधी वई आहे जो माण्हू फैसलो कंदा त अॻिते कीअं हलणो आहे। सुठी हुकुमरान लाइ इंतज़ामी रीसीट जी ज़रूरत आहे त थियणु घुर्जे। क़ाबिल एतराम सियासतदारनि समेत सभिनी पार्टियुनि जी बि ख़्वाहिश आहे त मसला हल थियनि। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वधीक चयो त मोहसिन नकवीअ खे हक़ हासिल आहे त पंहिंजी ज़ाती राय ॾे, आइन मुताबिक़ मसला हल करे सघजनि था। अवाम जी राय वठणु घुर्जे। अवाम गवर्नेंस मां मुतमिन आहे त ठीकु, मुतमिन न आहे त आइन मुताबिक़ फ़ैसिलो करे। पाकिस्तान जी सिक्योरिटी लाइ सुठी हुकमरानी इंतिहाई अहम आहे।

0: बदकिस्मती सां असां हार्ड स्टेट न आहियूं। हार्ड स्टेट जो मतिलब अहिड़ी रियासत आहे जिते आइन ऐं कानून सभिनी लाइ बराबर हुजे, जिते समूरा मामला आइन ऐं कानून मूजिब थियनि। हार्ड स्टेट जो मतिलब आहे त जिते को बि एलियट न हुजे। हार्ड स्टेट जो इहो मतिलब हरगिज़ न आहे त मिलिट्री रियासत हलाईंदी हुजे। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वधीक चयो त रियासत सां वफ़ादारी हर शहरीअ जो बुनियादी फर्ज़ आहे। रियासत आहे त असीं आहियूं, रियासत आहे त सियासत आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
6: उसी खिते की बनी है आवाज।
5: GAFM नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद।
8: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GAFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
5: yeah!

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जिए FM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खिते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जिए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: मैक्रीनो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ क्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अंडरस्टैंडिंग और बॉडी एक उनकी इन्फॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग है बिकॉज ही हैज बीन डीलिंग विद लॉट ऑफ इश्यू। उनका ये पर्सनल ओपिनियन है जिसकी उन्होंने राय दी है एंड ही हैज ए राइट टू गिव हिज ओन ओपिनियन इन द वे दैट ही फील्स एप्रोप्रिएट। उसके लिए क्या आपको छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जरूरत है? इट्स ए वेरी वैलिड क्वेश्चन कि आपकी आबादी इतनी बढ़ गई है, आपने इसे कम करना है, ज्यादा करना है, अवाम ने फैसला देना है इसका। मैंने तो यहां फैसला नहीं देना। नोबडी कैन इम्पोज इट, इट इज द विल ऑफ द पीपल। वो टू द पीपल एंड आस्क देम बिकॉज दैट इज हाउ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। वे आई स्टार्टेड माई प्रेजेंटेशन कि देर इज वन थिंग दैट वी नीड टू हार्डन द स्टेट एंड द हार्डनिंग ऑफ स्टेट मीन्स ए स्टेट विच इज रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ नॉट एज पर वन्स विम्स एंड विशेस। और दिस कंट्री जो गुड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेहतर मॉडल के लिए बात करने को तैयार ना हो ठीक है करनी चाहिए। लेट्स फाइंड इट और विल ऑफ द पीपल के मुताबिक उसको रिजॉल्व कर ले।
3: मुल्क की आबादी चौण ते वधी वई है। सूबा साग्या 1972 ईस्वी में आबादी 7 खां 8 करोड़ हुई, हाणे 25 करोड़ आहे। त इंतजामी रीसेट जी जरूरत आहे त थियण घुर्जे। सासदारन समेत सभिनी पार्टियुनि जी बि ख्वाहिश आहे त मसला हल थियन। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी प्रेस ब्रीफिंग कंदे चयो त मोहसिन नकवी खे हक हासिल आहे त पंहिंजी ज़ाती राय ॾे। आइन मुताबिक़ मसला हल करे सघजनि था, अवाम जी राय वठण घुर्जे। अवाम गवर्नेंस मां मुतमिन नाहे, तसलो करे। सिक्योरिटी हाणे इंतिहाई अहम आहे, मसला हल न पिया थियनि। हुन जो मतिलब आहे सुठी हुकुमरानी लाइ कुझ न कुझ करणो पवंदो।
4: हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें जिस तरह आप पहले करते आ रहे हैं। नो, विल टॉक विद एक्टिव स्टेक होल्डर विच आर पीपल, यू आर नॉट द एक्टिव स्टेक, यू आर ओनली स्टेक होल्डर इन योर ओन पर्सनल एंड इन योर ओन फैमिली वॉचिंग नॉट ओनली पीपल। ये उन्हें प्रॉब्लम कि हमें क्यों अपीज करें, हमारे आगे पैरों को हाथ नहीं लगाया जाए, हमसे बात करें। क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेडीज की जो फोर्स है ये मेरी सरदारी मेरी जाती फोर्स है।
3: बलोचिस्तान जा केतरा ही सरदार

0: त दहशतगर्दीअ जो हिसो आहिनि ही गैर कानूनी कारोबार जी परमिट सूबे जी बजेट मां हिसो घुरनि था। चवनि था त हिसो न ॾींदो त दहशतगर्दी कराईंदा। उहे माण्हू लेवीज फोर्सिस खे बि पंहिंजी सरदारी फोर्स समझनि था। ही चाहिनि था त बलोचिस्तान अॻिते न वधे। डीजी एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बलोचिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दीअ जा सबूत मीडिया खे ॾेखारे छॾिया। डीजी एसपीआर चयो त ॼाणी वाणी तासुर पखेड़ो पियो वञे त बलोचिस्तान जूं हालतूं ख़राब आहिनि। फितना हिंदुस्तान खे मुअसर अंदाज़ में निशानो बणायो पियो वञे। दहशतगर्द अवाम खे तकलीफ़ पहुचाईंदा त रियासत बि उन्हनि ख़िलाफ़ भरपूर ऐं सख़्त कार्रवाई कंदी। पाक फ़ौज जे तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियुनि जी का बि गुंजाइश न आहे। दहशतगर्दनि खे हाणे समुझ में अची वियो आहे त उन्हनि सां का बि नरमी न थींदी। दहशतगर्द रियासत जे साम्हूं झुकनि ॿी सूरत में ख़त्म कया वेंदा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी न्यूज़ ब्रीफिंग में वधीक चयो त फोर्सिस 40,348 ऑपरेशन कया। 819 जवान शहीद थिया ऐं 2084 दहशतगर्द मारिया विया। बलोचिस्तान में 31,080, ख़ैबर पख्तूनख्वा में 7,177 ऐं मुल्क जे ॿियनि इलाइक़नि में 2,091 ऑपरेशन कया विया। बम धमाकनि में घणे भाङे अफ़गान शहरी मुलविस रहिया आहिनि। दहशतगर्दी जे वाक़िअ में 322 पाकिस्तानी शहरी शहीद थिया। बदकिस्मती सां असां हार्ड स्टेट न आहियूं। हार्ड स्टेट जो मतिलब अहिड़ी रियासत आहे जिते आइन ऐं कानून सभिनी लाइ बराबरि हुजे, जिते समूरा मामला आइन ऐं कानून मूजिब थियनि। हार्ड स्टेट जो मतिलब आहे जिते का बि अशरफिया न हुजे। हार्ड स्टेट जो इहो मतिलब हरगिज़ न आहे त मिल्ट्री रियासत हलाईंदी हुजे। डीजी एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वधीक चयो त रियासत सां वफ़ादारी हर शहरीअ जो बुनियादी फर्ज़ आहे। रियासत आहे त असीं आहियूं, रियासत आहे त सियासत आहे।
1: Anything common between India and Afghanistan? So I DNA. The only thing common amongst them is that the diplomacy we see what happened. Isliye aap dekhe ki what is common between Fitnal Hindustan and Fitnal Khwarij? Nothing.
0: Bharat and Taliban jo DNA ek hi hai, Bharat aaka aur Afghan Taliban unna ja gulam hain. Afghan Taliban dahshatgardan ke karobar taur istemal kar raha hain. Aam Afghan shahri maujooda Taliban hukumat je policies sabab rukhain jo shikar hai. अफ़गान तालिबान हुकूमत जो तर्ज अमल इस्लामी तालीमात मुताबिक न आहे। उहे फतवाऊं जारी करे मुसलमाननि खे क़तल कराईंदा आहिनि। डीजी एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वधीक चयो त अफ़गान तालिबान हुकूमत भारतीय जनता पार्टी ऐं आरएसएस जो नज़रियो साॻियो आहे। फितना हिंदुस्तान ऐं फितना ख़्वारिज जा सरपरस्त आरएसएस ऐं हैबतुल्ला आहिनि। अफ़गान वज़ीर पंहिंजे पीउ भारत खे रिपोर्टूं ॾियण वेंदा आहिनि।
1: शहीद को शहीदों के बारे में जो की गई जो उन्होंने की, आई थिंक वो डिप्लोरेबल है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जैसे हम कहें ना नाकाबले फहम है। उसकी वजह यह है कि जो शहादत है ना और शहीद, वो पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके बहादुर बच्चे उतर जाके वतन का दफा करते हैं, शहीद हुए, जिनको बातचीत करते हैं कि डेड बॉडीज की उन्होंने बात की, उनकी जस्ते खाकी की बात की, तो उनकी शहादत के बारे में आप ये बात करें और आप वो बात करें जो कि हिंदुस्तान के जिस बयान में कुछ लाना चाह रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी, अपना राइट ऑफ लाइफ आपके राइट ऑफ लाइफ के लिए दिया। उसके बच्चे नहीं होते, उसके मां बाप नहीं, उसकी खुशियां, उसकी ख्वाहिशात नहीं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई वुड समवन सी इट।
0: जवाननि जी शहादत ते मौलाना जो बयान समझ खां ॿाहिरि आहे। जवाननि जी शहादत ते जेके ॻाल्हियूं कयूं वयूं उहे भारतीय बयानीअ जहिड़ियूं आहिनि। पाक फ़ौज जे तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरीअ जो JUI सरबराह जे बयान ते रदेमल। डीजी एसपीआर जो चवण हो त मोहतरम सियासतदान खे चवां थो त शऊर ॾियो।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसाम गई, बारिश ते गम है।

0: गीत संगीत और मटियारी FM 91.6।
1: जिस धरती से जुड़ा है कल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: हक्चिए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हम नवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे
1: FM 90 जो आ रहा हूँ धरती से

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।